0: BJP of turning every issue into a political event?
1: Well, I'm surprised क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते ये जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। ये वो नाम, ये वो चेहरे हैं जो दलगत राजनीति से उठकर एप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं, डिमांड करते हैं और करना चाहिए। एक हल्का सा प्रोत्साहन जब दूसरे देशों के राष्ट्र अध्यक्ष, जब आपके देश के बेटे को, जब उनको कॉल करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो सीना फख्र से चौड़ा होता है। मैं राहुल जी से मैं जरूर आग्रह करूंगा कि ही डिजर्व एक्नॉलेजमेंट, उनकी सराहना करना। ये मुझे लगता है गवर्नमेंट एज अ होल, जिसमें दोनों पक्ष हैं, सत्ता भी है विपक्ष भी है, सबको मिलकर करना चाहिए।
2: कैप्टन स्मिथ मचर ने अपनी जान बचाई, लोगों की जान बचाई, बहादुरी को उसकी सलाम है। अब वो कोई ऐसा थोड़ी, बीजेपी ने इवेंट मना दिया है, हर चीज बीजेपी इवेंट के साथ जोड़ती है। अरे भाई वो बच गया बेचारा, बस दुआ करो अल्लाह से वो बच खुश है, खत्म बात। ये कौन सी बात हो गई कि हर चीज को आप इवेंट बना करके पेश करोगे?
3: जो भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो तब खुश होता है जब भारत का मान सम्मान आगे बढ़ता है। जो भारत के लोकतंत्र से नफरत करता है वो तब मौन रहता है जब भारत का मान सम्मान आगे बढ़ता है। और राहुल गांधी मौन है क्योंकि भारत के लोकतंत्र से वो नफरत करते हैं। लोकतंत्र के पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 3 लाइन्स है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जब वी द पीपल ऑफ इंडिया आज कैप्टन स्मिथ मचर को सैल्यूट कर रहे हैं, राहुल गांधी इज द ओनली सेक्लूडेड नेता जो शांत है।
4: एक देश का बहादुर व्यक्ति स्मिथ मच्छार, उसको तो ये बधाई नहीं दे पाए। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप ने उसे बधाई धन्यवाद दिया, इजराइल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने दी, भारत के प्रधानमंत्री ने बात की, इनके मुंह में बर्फ जम गया। चाहे इनकी माँ सोनिया जी हो, बहन हो, कांग्रेस हो, तिलचट्टा हो, मगरमच्छा हो, जो भी हो, क्यों कि जो क्रैश करना चाहता था प्लेन को वो मुसलमान था। मुसलमान कहीं का हो, इनको लगता है मेरा वोट बैंक है।
0: Alright, we'll continue bringing you latest updates on this and more coming up after the break. 2 separate pleas before the Supreme Court, both challenging the functioning of CEC Ganesh Kumar Stadium.
5: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders, 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: There's politics brewing over the Indian captain. Captain Smith Mashar is being hailed for his quick thinking and bravery after averting a potentially catastrophic situation and helping save lives. Now, his actions have drawn praises across the political spectrum. The BJP has questioned the Congress over Rahul Gandhi not making a public statement so far on Captain Smith Mashar. BJP leader are asking why his bravery has not received acknowledgement from the leader of the opposition. The Congress has rejected the BJP's criticism, saying Captain Smith's bravery should be acknowledged, but accusing the BJP of turning every issue into a political battle. There are political reactions coming in on this. Listen to them.
1: Well, I'm surprised because नेता प्रतिपक्ष होने के नाते ये जिम्मेदारी उनकी भी बनती है. ये वो नाम, ये वो चेहरे हैं जो दलगत राजनीति से उठकर appreciation deserve करते हैं, demand करते हैं. और करना चाहिए एक हल्का सा प्रोत्साहन. जब दूसरे देशों के राष्ट्र अध्यक्ष जब आपके देश के बेटे को जब उनको कॉल करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो सीना फक्र से चौड़ा होता. मैं राहुल जी से मैं जरूर आग्रह करूंगा कि ही डिजर्व एक्नॉलेजमेंट, उनकी सराहना करना. ये मुझे लगता है गवर्नमेंट एज अ होल, जिसमें दोनों पक्ष हैं, सत्ता भी है विपक्ष भी है, सबको मिलकर करना चाहिए.
2: कैप्टन स्मिथ मचर ने अपनी जान बचाई, लोगों की जान बचाई, बहादुरी को उसकी सलाम है. अब वो कोई ऐसा थोड़ी बीजेपी ने इवेंट मना दिया है, हर चीज़ बीजेपी इवेंट के साथ जोड़ती है. अरे भाई वो बच गया बेचारा, बस दुआ करो अल्लाह से वो बच खुश है, ख़त्म बात. ये कौन सी बात हो गई कि हर चीज़ को आप इवेंट बना करके पेश करोगे.
3: जो भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो तब खुश होता है जब भारत का मान सम्मान आगे बढ़ता है. जो भारत के लोकतंत्र से नफरत करता है वो तब मौन रहता है जब भारत का मान सम्मान आगे बढ़ता है. और राहुल गांधी मौन है क्योंकि भारत के लोकतंत्र से वो नफरत करते हैं. लोकतंत्र के पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 3 लाइन्स है, वी द पीपल ऑफ इंडिया. तो जब वी द पीपल ऑफ इंडिया आज कैप्टन स्मिथ मचार को सैल्यूट कर रहे हैं, राहुल गांधी

0: दी ओनली सेक्लूडेड नेता जो शांत है।
1: एक देश का बहादुर व्यक्ति अस्मित मच्छाड़, उसको तो ये बधाई नहीं दे पाए। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप ने उसे बधाई धन्यवाद दिया, इजराइल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने दी, भारत के प्रधानमंत्री ने बात की। इनके मुंह में बर्फ जम गया, चाहे इनकी माँ सोनिया जी हो, बहन हो, कांग्रेस हो, तिलचट्टा हो, मगरमच्छा हो, जो भी हो। क्यों? कि जो क्रैश करना चाहता था प्लेन को वो मुसलमान था। मुसलमान कहीं का हो, इनको लगता है मेरा वोट बैंक है।
2: कैप्टन स्मिथ मच्छार मस्ट गेट द अशोक चक्र एंड वी अग्री विद द एबीवीपी बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड एंड फॉर हिज रेयरेस्ट एक्ट ही डिजर्व्स इट। वी अर्ज द गवर्नमेंट इज वेल to please suggest his name, because this is not just for him, it is for the entire nation to highlight that a common citizen and a pilot can save the lives of 174 individuals. This warrants courage, this warrants the nation's highest gallantry award, which is the Ashok Chakra.
3: Coming up after the break, two separate pleas before the Supreme Court, both challenging the functioning of CEC Gyanesh Kumar. Stay tuned, we'll be right back.
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to Watch and Prime 5.
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
6: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5 weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
7: जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।
8: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
9: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
10: अरे मेरे राजा,
11: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
12: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
13: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.

0: हिंदू मुसलमानों के अंदर, हिंदू और सिखों के बीच में, हिंदू ईसाइयों के बीच में आपने खाई पैदा कर दी, मंदिर के निर्माण में घपला किया, और फिर हमारे आस्था के प्रतीक भगवान राम के चढ़ोतरी में पैसे खा गए। और कौन लोग हैं अपराधी इसमें? सारे विश्व हिंदू परिषद के लोग उसमें शामिल हैं। जो चढ़ोतरी आ रही है वो पूरे तरीके से भाजपा के चुनावी चंदे में जा रही है। भाजपा के बड़े बड़े जो भवन बन रहे हैं, आरएसएस के बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, उसमें पैसे जा रहे हैं।
1: वीर सिंह जी हर समय सनातन का, हिंदुओं का, हिंदू धर्मावलंबियों का, साधु संतों का अपमान करते आए। वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हर समय तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। ये वही कांग्रेस और कांग्रेस के नेता है जिन्होंने राम मंदिर का भी विरोध किया। वीर सिंह के इस तरह के तथ्यहीन बयान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो किन तथ्यों के आधार पर इस तरह की बातें कर रहे हैं? वो राम को बदनाम कर रहे हैं? वो सनातन को बदनाम कर रहे हैं? वो सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं पर ठेस पहुंचा रहे हैं?
2: Tanushree Desai tracking all the finer details for us joins us live at this point. Tanushree, just to be clear, is the Congress attempting to draw distinction between Hinduism or Sanatan Dharma as a religious tradition and Hindutva as a political ideology while accusing the RSS and BHP of collapsing that distinction?
3: Yes, sir. Once again, Digvijay Singh's statement has brought political controversy in Madhya Pradesh, and where it can be seen where Digvijay Singh has clearly stated that RSS or Vishwa Hindu Parishad has stated Hindu Dharma in such a way and called it Sanatan that has created social dimensions or social diversity in India, and it is clearly seen by BJP also. BJP has slammed Congress and Digvijay Singh, stating that Congress has always been against Hindu Dharma, and when it was a matter of Ram Mandir construction, they were also against the Ram Mandir construction, whereas Digvijay Singh has also stated that RSS or Vishwa Hindu Parishad has been trying to create and to harm the diversity of India, and also the donation that was received for Ram Mandir's construction was used somewhere else. Whereas on the other hand, BJP has been stating that Congress is against Hindutva or Sanatan, and they are again and again they are targeting Hindu people and Sanatan people in India.
2: As always, thanks so much for breaking down the details for us. We will, of course, continue to track all the latest political reactions with you. On that note, we're slipping into a very quick break. We're back in a moment with the latest updates for you. Do stay tuned to The Breakfast Show on the NDTV Network.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
4: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
5: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
6: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
6: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आके और मसाला।
5: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: गिर गए, तीर हम खुदैया बनेंगे।
1: आना चाहिए, उन्हें आना चाहिए, लेकिन उनके मन में जो पीड़ा है, कुंठा है कि उनके ना चाहने के बावजूद से ये सब इतना अयोध्या का विकास हुआ है। तो विकास सब जगह दिखता है, अखिलेश जी को भी आना चाहिए, हनुमानगढ़ी भी पास में ही है, भगवान श्री राम का मंदिर भी जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है वो भी वही नज़दीक है, तो उन्हें निश्चित रूप से आना चाहिए।
2: बढ़िया, जय रामलला के पास पैर पे जाके माफ़ी मांगे कि मेरे बाप ने बहुत बड़ी गलती की थी कार सेवकों पे गोली चला के, मैंने आज तक गलती की, अभी तक नहीं आया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमें उम्मीद है कि रामलला माफ़ कर देंगे।
3: अब उन्होंने भगवान राम ने पहले लोकसभा में हराया, फिर आदरणीय अखिलेश जी को ज्ञान दिया कि देखो हमारे यहाँ चोरी हो रहा है, उन्होंने भंडा फोड़ किया, अब पापियों को थोड़ा हटाए हैं, तो हो सकता है कि उसलिए जा रहे हों पूजा अर्चन करने, तो क्या प्रॉब्लम है?
4: All right, Ayodhya is now seeing competing claims over religious legitimacy and electoral legitimacy. Ajay Dubey, tracking all the final developments for us, joins us live on the broadcast currently. Ajay, break down the significance of Akhilesh Yadav's visit ahead of an election in which religion, the Ram temple and question of who can claim the Hindu vote are likely to remain politically significant.
5: And see, definitely this time Akhilesh Yadav is going there for his one of his candidate and used to be the minister in his government, Mr. Pawan Pandey's religious event. He will participate there. Akhilesh Yadav will go there and participate into a religious event. Apart from that, see, Ayodhya is very prominent in UP's politics. In parliament elections, when BJP lost Ayodhya, after that there is so much of discussion regarding Ayodhya, what is going on in Ayodhya, and if we calculate towards the assembly constituencies, Samajwadi Party is much sure that they are going to defeat BJP again in assembly elections. This time there is continuous political narratives are being made by Samajwadi Party, and as Rajiv Rai was saying that Lord Ram decided that in parliament elections BJP will lose there, then later on Lord Ram informed Akhilesh Yadav that something is happening in the temple, and things came out as an information, and this time Samajwadi Party is trying to get, they are trying to motivate on their PDA narrative. In Ayodhya, there's a huge numbers of Parsi community voters. Avdesh Prasad is coming from that community, and apart from that, they're also targeting pandits through Pawan Pandey. So it's a new political equation which Samajwadi Party is trying to connect in Ayodhya.
4: Ajay, we'll of course continue to track the reactions that come in as far as Akhilesh Yadav's Ayodhya touchdown is concerned with you. Thanks so much for joining us. Meanwhile, the Congress and the Samajwadi Party's alliance equation in Uttar Pradesh is showing some fresh signs of friction ahead of the 2027 assembly polls. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav had said the focus should be on the alliance's victory rather than on how many seats each party gets. But the Congress has now hit back, with Imran Masood questioning how the alliance can achieve victory without first discussing seat sharing. He says victory is possible only when there are seats, directly responding to Akhilesh Yadav's remarks. You know, the Congress even stated that Samajwadi Party won seats because of Rahul Gandhi's. Akhilesh Yadav is saying the focus should be on the result, while the Congress is effectively saying, first, tell us the electoral arithmetic. Listen in.
6: ये बहुत अच्छी बात लगती है कि बात सीट की नहीं, बात जीत की होगी, लेकिन जब सीट ही नहीं होगी तो जीत कैसे होगी? तो मुझे भी यही कहना है, जब सीट नहीं तो फिर जीत कैसी होगी? जब सीट होगी तभी तो जीत होगी।
7: मुझे लगता है कि वो एक बार पीछे जाएं और जाके ये देखें, जब मुलायम सिंह यादव फुल फ्लैश उनकी गवर्नमेंट थी, क्या तब कभी 37 सीटें आई? और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की फुल फ्लैश गवर्नमेंट थी, क्या तब उनकी इतनी सीटें आई? जब BSP के बहन जी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, 5 सीटें थी ना? तो सीटें तो राहुल गांधी जी की वजह से आई। राहुल गांधी जी जिस प्रकार सामाजिक न्याय की के योद्धा के तौर पर सामने आए।
4: एंड ऑन दैट नोट, लेट्स टर्न आवर अटेंशन नाउ टू तमिलनाडु, वेयर अ फ्रेश पॉलिटिकल क्लैश इज ब्रूइंग, दिस टाइम ओवर विजय रूरल कैंपेन फॉर द धारापुरम एंड मधुरंतकम बाईपोल्स। चीफ मिनिस्टर विजय हैज बीन टेकिंग हिज कैंपेन टू द ग्रास रूट्स, राइडिंग अ बुलक कार्ट, क्लाइंबिंग ऑन टू अ ट्रैक्टर, मीटिंग फार्मर्स इन द फील्ड्स एंड स्टॉपिंग एट विलेज टी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
6: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्थर मसाला।
5: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities, NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
6: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.

0: लेकिन ये तो चुनाव के प्रक्रिया से सरकारें आई है, तो ये सरकार अगर लोगों के प्रक्रिया से आई होंगी तो ये सरकार ने वो संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत जो गुंडाइज्म देश और राज्यों में बढ़ गया है उसको रोकना चाहिए।
1: All right, with that, time for us to slip into a short break. On the other side, we'll get to the latest on the Fly Dubai incident involving the Omani pilot. Stay with us.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
6: Pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: यू वॉच अस, व्यूअर यू ट्रस्ट अस, एंड नाउ योर वोट कैन स्पीक फॉर व्हाट वी मीन टू यू। Vote for NDTV at the ITA Awards 2026. You've got that power. Your support has always been an important part of NDTV's journey. And at the ITA Awards 2026, we are asking for your vote. Vote for NDTV and show your support for the journalism that you trust, the journalism that matters. It will just take a few moments, and every vote means a great deal to us. So do vote, share the link,

0: all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
1: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
2: High rate, check the audio.
0: Let's do it. Let's start.
3: Breaking stories, we're jumping straight into it.
0: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
1: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
0: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling. For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
1: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
0: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
4: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
5: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
6: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव. दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस. व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी. योर फ्रेंड सेड ये ले ले. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma.
7: Welcome back. Now, controversy over actor Sanjay Dutt's remarks on peace in India, in fact, rather how he felt there was no peace in India and prayed it would return soon, has sparked a political war of words. On Shekhar Suman's show, Dutt said he could no longer feel the same peace in India and spoke of the country's need for peace and togetherness. He prayed for it. Now, this created a huge controversy, and the actor has now clarified that his remarks were part of a scripted, light-hearted conversation, says he never intended to hurt or disrespect anyone. But the political reaction has only intensified. BJP leader Paranay Phuke has hit back at Dutt, questioning his remarks, taking a dig at his liquor brands, even asking him to go to Pakistan if he feels no peace. Congress leader Nana Patole, however, backed Dutt, saying people felt unsafe in BJP-ruled states. On the other hand, Samajwadi Party alleged Dutt's U-turn could have been due to government pressure being brought on him. Meanwhile, Shekhar Suman says the show is pro-people, unbiased and democratic, insisting that Dutt's remarks were completely innocuous. He urged that Sanjay Dutt not be penalized or maligned for what he never said or meant.
8: There should be a peace. I can't feel that peace, you know, in our country anymore. I think we Indians are large-hearted people.
9: Yes. You know?
8: And we are hospitable. We give so much, you know, and we should be like that, always.
10: And बस मैं शिवजी से वही प्रार्थना करता हूँ कि वो समय जल्दी.
11: और हम भी शिवजी से वही प्रार्थना करते हैं.
12: मुझे ऐसा लगता है कि संजय दत्त सटिया गए और उम्र के साथ साथ इस प्रकार का बेतुका वक्तव्य होता है. और मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से वो अनेक दारू के ब्रांड अभी उन्होंने लॉन्च किए उसका भी असर उन पे हो रहा है. और संजय दत्त जी को जब भारत में शांति नहीं मिलती होंगी तो निश्चित ही पाकिस्तान में उनको शांति मिलेंगी या तो फिर उनको इरवड़ा जेल में शांति मिलेंगी. मुझे ऐसा लगता है दोनों में से एक जगह पे वो चले जाए.
13: बिल्कुल सच कहा है उनने कि राज्यों में है या देशों में हो जो बीजेपी की सरकार है वहाँ पर दिन दहाड़े हत्या हो रही है. लोगों को सुरक्षित नहीं है लोग. और इसलिए उनने बीजेपी की और केंद्र की और राज्य की सरकारों को अवगत कराया है. उसका संज्ञान लेना चाहिए. ये कोई देश में सुरक्षित नहीं है तो देश के एक आम इंसान को भी वो बोलने का अधिकार है क्योंकि लोगों के वोटों की सरकार होती है. लेकिन ये तो चुनाव के प्रक्रिया से सरकारें आई है तो ये सरकार अगर लोगों के प्रक्रिया से आई होंगी तो ये सरकार ने वो संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत जो गुंडाइज्म देश और राज्यों में बढ़ गया है उसको रोकना चाहिए.
14: लगता है कि देश के जो अधिकतर नागरिक हैं आज वो इस देश में कई बार ऐसा होता है कि सुरक्षित महसूस नहीं करते. और उसका कारण है कि जिस प्रकार से अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं विशेषकर उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अपराधी घूम रहे हैं और अपराध बेलगाम है और अपराधियों को सरकार के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है तो कैसे लोग सुरक्षित महसूस करेंगे. लेकिन अगर संजय दत्त साहब अपने बयान से पीछे हटते तो कहीं ना कहीं इस बात को भी ये दिखाता है कि कैसे सरकार दबाव बनाती है उन इंडिपेंडेंट वॉइसेस पे जो अपनी बात को, अपने दिल की बात को जनता के सामने रखते हैं और उन्हें अपने, मुझे लगता है किसी भी कारणवश उन्हें अपनी बात से पलटना पड़ता है।
7: All right, so Sanjay Dutt giving a clarification after facing that backlash. Well, that's it for me for the moment. News updates continue right here on NDTV. Do keep watching.
4: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
15: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।

0: मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे इंटरेस्ट है।
1: Quarter century of transformative leadership, from defining governance in Gujarat to steering India as a pivotal global power, Prime Minister Narendra Modi completes 25 years of governance.

0: Minister Aman Arora has hit back, accusing central agencies like the CBI and ED of working at the BJP's behest, questioning whether the probe will deliver justice.
1: 5 saal lage pure election se pehle kattar imandar aur aaj October mein jo aaj faisla High Court se aaya hai to inko pure inka pura chehra nange hone mein pure 5 saal lag gaye. तो आज भगवंत मान साहब नहीं रहे, आज बेईमान मान के नाम से आप जाने जाओगे.
2: पहले से ही भारतीय जनता पार्टी कहते आ रही थी कि पंजाब में सब कुछ, चाहे कानून की व्यवस्था हो चाहे भ्रष्टाचार हो, चरम पर पहुंची हुई है. कानून की व्यवस्था चरमराई हुई है और भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंची हुई है. और आज जो हम कह रहे थे उस बात का पुष्टिकरण स्वयं उच्च न्यायालय ने किया है, हाई कोर्ट ने किया है. आज न्यायालय ने सीबीआई जांच के लिए कहा है. मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को और भगवंत मान जी को इस पर सफाई देनी चाहिए कि आखिर कितना का घोटाला हुआ है और उनके खुद के सचिव इसमें कितने लिप्त हैं.
3: हाईकोर्ट पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है यह एक बहुत ही सीरियस इश्यू है, यह एक बहुत ही करप्शन से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है और ऐसे सीरियस ऑफेंस को देखते हुए तुरंत सीबीआई को 2 महीनों में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है. अब दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा और सबको सामने आएगा किस तरह से भगवंत मान जी ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम से अपने ओएसडी के माध्यम से आम आदमी पार्टी पैसे इकट्ठे कर रही थी. इसमें अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी का रोल भी सामने आएगा.
4: इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी है चाहे सीबीआई है, वो केंद्र सरकार के बिहाफ पे उनकी एजेंसी बन के काम करती है. इंसाफ का तो कोई मेरे को लगता नहीं है कि कोई इंसाफ होएगा वहां पे, क्योंकि वो विंडिक्टिव होके काम करती है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे.
5: पुलिस को भगवंत मान केजरीवाल ने अपना नौकर बना रखा है पंजाब में. ईडी जो डीजीपी पंजाब का है गौरव यादव, वो कच्चा डीजीपी है पिछले 4-4.5 साल से. इसलिए पंजाब बहुत सीरियस क्राइसिस में है और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसके साथ साथ जो करप्शन है उसका तो बहुत ज्यादा इस वक्त बोलबाला हो चुका है. और चीफ मिनिस्टर आप खुद, उसकी वाइफ के ऊपर इल्जाम लगे 5 करोड़ के, उसके ओएसडी के मुतलक ईडी ने 4 चिट्ठियां लिखी हैं डीजीपी पंजाब को के ओएसडी घुम्मन के खिलाफ एफआईआर दर्ज को नहीं, लेकिन नहीं की. सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज पंजाब में किस तरह की पुलिसिंग हो रही है.
6: मुख्यमंत्री साहब ने पूछना चाहना कि फोन की जवाब दोगे, असि कहने कि असं कट्टड़ ईमानदार है, पर मैं तुम्हें कहना कि तुम कट्टड़ बेईमान. आज हूँ ही देख रहे हो लोगों की जी अंदर भी देखा कि किस हिसाब के नाल जे गवर्नमेंट के पैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. तो मैं पूछना चाहना कि ईमानदार साहब ये किसान की लुट खसुट कौन रोकेगा. ये जी चीज़ हुई है नाल ही ये उत्ते मुख्यमंत्री साहब पूछना चाहना कि अज थोड़ी स्टेटमेंट आनी चाहिए है. स्टेटमेंट नहीं ये कट्टड़ ईमानदार जिहड़ा हुंदा उहनूं रिजाइन कर देना चाहिए.
0: All right, and in Punjab, it's not just political scrutiny over corruption charges, but also over law and order. That is the other big issue after 3 cases of shooting took place within a period of just 72 hours. On October 4th, an ASI was shot in the arm in Amritsar, while a former Sarpanch, Navdev Singh Neetu, was shot dead in Tarantaran. And then a day earlier, influencer Matt Sandhu was shot dead in Amritsar. He was an LGBTQ influencer and a makeup artist. Now, the opposition has trained its guns on Bhagwant Mann government, accusing it of failing to control crime and gang violence. The BJP has targeted the Punjab government over the state's law and order situation. Sambit Patra, citing the recent killings, alleging that law and order had deteriorated under the AAP government, demanding answers from the Punjab government on the situation, while Congress Punjab in charge Sachin Pilot has alleged that gangsters are firing openly, that extortion rackets are operating from jails, and that drugs are being delivered to homes on phone orders.

0: के बाद जीआरपी अमृतसर से मोटरसाइकिल पे अपने सिविल ड्रेस में घर आ रहे थे, तो घर से करीब 1 किलोमीटर पहले ही जो यहाँ एक नहर पड़ती है अजराला, और वहाँ 3 जो अननोन पर्सन है मोटरसाइकिल सवार, उन्होंने एक फायर किया है और फॉर्चुनेटली जो इसका पूरी तरह बचाव हो गया है और सिविल हॉस्पिटल एडमिट है। कार्रवाई शुरू कर दी है, हर एंगल जो देखा जा रहा है, जैसे भी कोई बात सामने आएगी, कोई एविडेंस सामने आएगा तो उसी हिसाब से कार्रवाई हमें।
1: पहले से ही भारतीय जनता पार्टी कहते आ रही थी कि पंजाब में सब कुछ, चाहे कानून की व्यवस्था हो चाहे भ्रष्टाचार हो, चरम पर पहुंची हुई है। कानून की व्यवस्था चरमराई हुई है और भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंची हुई है। और आज जो हम कह रहे थे उस बात का पुष्टिकरण स्वयं उच्च न्यायालय ने किया है, हाईकोर्ट ने किया है। आज न्यायालय ने सीबीआई जांच के लिए कहा है। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को और भगवंत मान जी को इस पर सफाई देनी चाहिए कि आखिर कितना का घोटाला हुआ है और उनके खुद के सचिव इसमें कितने लिप्त हैं।
2: पंजाब के अंदर जो आज कल भी सरपंच की हत्या कर दी गई, गैंगस्टर खुलेआम गोलियां दाग रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, लोग जेलों से बैठकर विरोधी मांग रहे हैं, तो वहाँ लॉ ऑर्डर कलेप्स कर चुका है। और जो चिट्टा को ड्रग्स बोलते हैं, बड़ी जानलेवा ऐसी ड्रग्स हैं जो ऐसी मतलब फोन पर होम डिलीवरी हो रही है ड्रग्स की, वो संभालने में आम आदमी पार्टी सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है और वहाँ हम लोगों ने ताकत से जमीन पर हम लोग उतरे हैं और पंजाब में मुझे लगता है कि हम अच्छे बहुमत से सरकार में।
3: पंजाब दे विच थां थां गोलियां बज रही ने पर पंजाब सरकार सुती पई है। पिछले 4.5 साल दे विच कदे कबड्डी खिडारी, कदे कलाकार, कदे कोई व्यापारी, कोई वर्ग ऐसा नहीं जिन्हों गोलियां मार के ना मारिया गया। डर ते सहम दा माहौल। पंजाब दियां मावां इस गल्लां तों चिंतित ने कि उहदा पुत घरों जावेगा, वापस आवेगा कि नहीं आवेगा। यह हालात पंजाब दे विच बणे हुए ने। कानून व्यवस्था बुरी तरह तहस नहस हो चुकी है। व्यापारी, किसान, मैं समझदा कि मुलाजम, चाहे कोई वर्ग का भी आगू है, हरेक वर्ग अज इस गल दे डरों है कि घरों बाहर निकलिए कि ना निकलिए।
4: All right, some breaking news now coming in from Tamil Nadu, where the Madras High Court has allowed the DMK to proceed with a defamation suit against TVK ministers Adhav Arjuna and CTR Nirmal Kumar, as well as the TVK IT wing. This over statements concerning the POXO case involving granite businessman R. Veeramani. The suit filed by the DMK General Secretary Durai Murugan has sought over 1 crore in damages and alleges that the ministers accused the DMK of failing to act against Veeramani during its previous tenure. The justice there granting the party leave to sue on October 5th. The court's order permits the suit to proceed. Well, let's go across to NDTV's Vijay Gopal now for more. And Vijay, this, you know, Veeramani case is you know, hugely it's a political hot potato in the state. And now the court is allowing the DMK to continue with the defamation suit against TVK.
5: Gargi, that's right. Veeramani case, POXO case has become politically important as far as Tamil Nadu is concerned. Even last week, a few weeks back, Madras High Court had made observation saying that all parties should stop politicizing this specific issue. We should handle this case very carefully as many minors have got affected because of granite baron Veeramani, and everyone should unitedly should handle together this specific case. But on the other hand, the court made the specific observation while hearing a petition which was filed by DMK General Secretary Durai Murugan. Now, court has granted permission to sue TVK ministers Adhav Arjuna and Nirmal Kumar, and also TVK IT wing, where DMK accused TVK for allegedly making defamatory case,
4: right,
5: defamatory remarks against DMK party, saying that DMK tried to protect Veeramani when during previous DMK government. Karki.
4: All right. Thanks so much for joining us with all those details. Now, right now we're going into 2 by-elections in Tamil Nadu, and that is the reason so much politics is currently taking place and focusing on that. Now the DMK also hitting out at Chief Minister Ravij.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
4: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: We brought in the land high-level diplomatic relations. We seem to have the courage to go into surgical strikes with them. Why don't we have the courage to sit across the table with them? Why can't we talk to them? Why can't we make friends with them?
1: सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद भी तो टेररिज्म ख़त्म नहीं हुआ, या तो हम कहते हैं कि उसके बाद टेररिज्म ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो गई, या उससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक जो बीजेपी ने मार्केटिंग की सर्जिकल स्ट्राइक की, उससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक होती थी लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं होती थी, उसकी कोई क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करता। ये बीजेपी का फंडा है कि सर्जिकल स्ट्राइक की, अच्छी बात है, मुल्क के अंदर कैपेसिटी है सर्जिकल स्ट्राइक करने की, लेकिन उसके बाद क्या ख़त्म हो गया माहौल? फिर भी तो चीज़ रहती है, इसलिए बातचीत होनी चाहिए।
2: आपको लगता है मनीष शंकर जो कहते हैं ठीक है,
1: बिल्कुल दुरुस्त कहता है, पुराना लीडर है, सीजन लीडर है, दुरुस्त कहता है, स्कॉलर है, वो अनपढ़ आदमी नहीं है।
3: Alright, with that, we'll slip into a short break. Coming up on the other side, international news, and we'll tell you all we know about the plague scare in Russia. Stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स अनसर्टन अनरिटन एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
4: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
5: Pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: election commissioners' decision making as well. The Supreme Court says that non-unanimous decisions can be put on hold as well. Fifth, SC to examine immunity for chief election commissioners and the election commissioners as well. In other news, battleground Uttar Pradesh, Congress and Samajwadi Party's alliance equation in Uttar Pradesh is now showing fresh signs of friction, and that is ahead of the 2027 assembly polls. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav had said that the focus should be on the alliance's victory rather than on how many seats each party gets. But Congress has now hit back. Congress MP Imran Masood questioned how the alliance can achieve victory without first discussing seat-sharing formula. He said, victory is possible only when there are seats, directly responding to Akhilesh Yadav's remarks. Congress even stated that Samajwadi Party won seats because of Rahul Gandhi's push. Take a listen to all the reactions coming in on this story.
1: ये बहुत अच्छी बात लगती है कि बात सीट की नहीं बात जीत की होगी लेकिन जब सीट ही नहीं होगी तो जीत कैसे होगी तो मुझे भी यही कहना है जब सीट नहीं तो फिर जीत कैसी होगी जब सीट होगी तभी तो जीत होगी
2: मुझे लगता है कि वो एक बार पीछे जाएं और जाके ये देखें जब मुलायम सिंह यादव फुल फ्लैश उनकी गवर्नमेंट थी क्या तब कभी 37 सीटें आई और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की फुल फ्लैश गवर्नमेंट थी क्या तब उनकी इतनी सीटें आई जब बीएसपी के बहनजी के साथ मिलकर चुनाव लड़े 5 सीटें थी ना तो सीटें तो राहुल गांधी जी की वजह से आई राहुल गांधी जी जिस प्रकार सामाजिक न्याय की के योद्धा के तौर पर सामने आए
3: Rahul Gandhi has played a very important role because during the campaign, he has led the campaign with the Save Constitution campaign. And it was the consolidated effort of the coalition that so many seats came in UP. And very soon everything will be decided. And it is for the leadership, the central leadership to decide, both the parties. When, how, and how many seats.
0: Meanwhile, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav is all set to visit Ayodhya on October 8th. That's ahead of Uttar Pradesh assembly elections. The Samajwadi Party chief will attend the concluding session of an 8-day Srimad Bhagavat Katha organized by senior party leaders and former Ayodhya MLA as well, Tej Narayan Pandey. Akhilesh Yadav is also expected to offer prayers and interact with devotees at the religious gathering. The timing of the visit has triggered a political face-off, with the BJP now questioning Akhilesh's Ayodhya outreach and asking whether he will also visit the Ram Mandir temple. The BJP has accused the Samajwadi Party chief of turning the Ayodhya visit into political exercise ahead of the assembly polls in the state.
4: राम मंदिर भी जाएंगे कोई आश्चर्य की बात नहीं वोट के खातिर टोपी भी पहनेंगे नवाज भी पढ़ेंगे अब पढ़ते आए हैं बाप पिताजी भी पढ़े नेताजी अब बेटा जी भी पढ़ेंगे और रम खुदैया बनेंगे रम खुदैया का कहानी नहीं जानते होंगे एक आदमी एक नाला टपना था मियाँ जी या खुदा कह के टप गया हिंदू था का या बजरंगबली एगो अखिलेश यादव थे जो कहीं कि थोड़ा खुदा का भी ले लेते हैं थोड़ा बजरंग बीचे में टपक के गिर गए तीर हम खुदैया बनेंगे
5: ना चाहिए उन्हें आना चाहिए लेकिन उनके मन में जो पीड़ा है कुंठा है कि उनके ना चाहने के बावजूद से ये सब इतना अयोध्या का विकास हुआ है तो विकास सब जगह दिखता है अखिलेश जी को भी आना चाहिए हनुमानगढ़ी भी पास में ही है भगवान श्री राम का मंदिर भी जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है वो भी वही नज़दीक है तो उन्हें निश्चित रूप से आना चाहिए
6: बढ़िया जय राम लल्ला के पास पैर पे जाके माफ़ी मांगे कि मेरे बाप ने बहुत बड़ी गलती की थी कार सेवकों पे गोली चला के मैंने आज तक गलती की अभी तक नहीं आया हूँ मुझे माफ़ कर दीजिए हमें उम्मीद है कि राम लल्ला माफ़ कर देंगे
7: अब उन्होंने भगवान राम ने पहले लोकसभा में हराया फिर आदरणीय अखिलेश जी को ज्ञान दिया कि देखो हमारे यहाँ चोरी हो रहा है, उन्होंने भंडा फोड़ किया, अब पापियों को थोड़ा हटाए हैं, तो हो सकता है कि उसलिए जा रहे हों पूजा अर्चना करने, तो क्या प्रॉब्लम है।
0: In other news, shifting our focus to Punjab, where the state's chief minister Bhagwant Mann is now facing fresh political heat after the Punjab and Haryana High Court ordered a CBI probe into alleged corruption involving his OSD. The allegations center on claims of bribery and alleged fixed rates for postings and approvals linked to the chief minister's office as well. BJP leader Ravneet Singh Bittu has now attacked Mann, calling him Beman Mann and alleging corruption within the chief minister's office itself. But Punjab Minister Aman Arora has hit back, accusing central agencies like the CBI and ED of working at the BJP's behest and further questioning whether the probe will deliver justice or not.
8: 5 saal lage pure election se pehle कट्टर ईमानदार और आज अक्टूबर में जो आज फैसला हाई कोर्ट से आया है तो इनको पूरे इनका पूरा चेहरा नंगे होने में पूरे 5 साल लग गए। तो आज भगवंत मान साहब नहीं रहे, आज बेईमान मान के नाम से आप जाने जाओगे।
9: पहले से ही भारतीय जनता पार्टी कहते आ रही थी कि पंजाब में सब कुछ, चाहे कानून की व्यवस्था हो चाहे भ्रष्टाचार हो, चरम पर पहुंची हुई है। कानून की व्यवस्था चरमराई हुई है और भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंची हुई है। और आज जो हम कह रहे थे उस बात का पुष्टिकरण स्वयं उच्च न्यायालय ने किया है, हाईकोर्ट ने किया है। आज न्यायालय ने सीबीआई जांच के लिए कहा है। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को और भगवंत मान जी को इस पर सफाई देनी चाहिए कि आखिर कितना का घोटाला हुआ है और उनके खुद के सचिव इसमें कितने लिप्त हैं।
10: हाईकोर्ट पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है ये एक बहुत ही सीरियस इश्यू है, ये एक बहुत ही करप्शन से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है और ऐसे सीरियस ऑफेंस को देखते हुए तुरंत सीबीआई को 2 महीनों में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। अब दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा और सबको सामने आएगा किस तरह से भगवंत मान जी ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम से अपने ओएसडी के माध्यम से आम आदमी पार्टी पैसे इकट्ठे कर रही थी। इसमें अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी का रोल भी सामने आएगा।
11: इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी है चाहे सीबीआई है, वो केंद्र सरकार के बिहाफ पे उनकी एजेंसी बनके काम करती है। इंसाफ का तो कोई मेरे को लगता नहीं है कि कोई इंसाफ होएगा वहां पे, क्योंकि वो विंडिक्टिव होके काम करती है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे।
12: मेरा सीधा सवाल है सीएम भगवंत मान नू कि तू अपने पोस्टर ते लवा रहे हैं कट्टर ईमानदार दे ते दफ्तर तेरा सारा बेईमाना ना भरिया, इहदा जवाब अज हाई कोर्ट नहीं देता ते आंदे 2 महीनों च इह जिन्ने स्केलटन इहनां दे कबर्ड च ने सारे बाहर डिगणे शुरू हो जाण। सीएमओ दा अपना ऑफिस इहदे ओएसटी इहदे विच नेम कीते गए ने, वड्डे पैमाने ते पैसे लैके बदलियां ते होर सिफारशां ते होर कारोबारी जिहड़े ने उहनां जिहड़ी मदद कीती है, ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਿਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
13: ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿਵਲ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਸਰ ਖਾਨਾ ਇੱਕ MLA ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਲੂਟਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ।
14: पुलिस को भगवंत मान केजरीवाल ने अपना नौकर बना रखा है पंजाब में। ईडी जो डीजीपी पंजाब का है गौरव यादव, वो कच्चा डीजीपी है पिछले 4-4.5 साल से, इसलिए पंजाब बहुत सीरियस क्राइसिस में है और मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसके साथ साथ जो करप्शन है उसका तो बहुत ज्यादा इस वक्त बोलबाला हो चुका है, और चीफ मिनिस्टर आप खुद उसकी वाइफ के ऊपर इल्जाम लग गए 5 करोड़ के, उसके ओएसडी के मुतालिक ईडी ने 4 चिट्ठियां लिखी हैं डीजीपी पंजाब को के ओएसडी घुम्मन के खिलाफ एफआईआर दर्ज को नहीं, लेकिन नहीं की। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज पंजाब में किस तरह की पुलिसिंग हो रही है।
15: मुख्यमंत्री साहब ने पूछना चाहना कि हूं की जवाब दोगे, असं कहने कि असं कट्टर ईमानदार है, पर मैं तुम्हें कहना कि तुम कट्टर बेईमान, आई हूँ ही देख रहे हो लोगों की जी अंदर भी देखा कि किस हिसाब के न जेडे गवर्नमेंट के पैसे धज्जियां उड़ाइया जा रही, तो मैं पूछना चाहना कि ईमानदार साहब ये किसान की लुट सुट कौन रोकेगा, ये जी चीज हुई है नाल ही ये उत्ते मुख्यमंत्री साहब पूछना चाहना कि अज थी स्टेटमेंट आनी चाहिए है, स्टेटमेंट नहीं ये कट्टर ईमानदार जो हूँ तो रिजाइन कर देना चाहिए।
0: Seeing on the stories from Punjab, the state's law and order is under intense political scrutiny after 3 separate shooting incidents in just 72 hours. On October 4th, an ASI was shot in the arm in Amritsar, while former Sarpanch Navtej Singh Neetu was shot dead in Tarantaran. A day earlier, influencer Mad Sandhu was shot dead in Amritsar as well. The opposition has now trained its guns on the Bhagwant Mann government, accusing it of failing to control crime and gang violence in the state. The Bharatiya Janata Party has now targeted the Punjab government over the state's law and order situation. Sambit Patra cited recent killings, alleging that law and order had worsened under the Aam Aadmi Party government in Punjab. He demanded answers from the Punjab government on the situation as well. Congress Punjab in charge Sachin Pilot has alleged that gangsters are firing openly, extortion rackets are operating from jails, and drugs are being delivered to homes on just phone orders.
16: ड्यूटी करने के बाद जीआरपी अमृतसर से मोटरसाइकिल पे अपने सिविल ड्रेस में घर आ रहे थे, तो घर से करीब 1 किलोमीटर पहले ही जो यहाँ एक नहर पड़ती है अजराला, और वहाँ 3 जो अननोन पर्सन है मोटरसाइकिल सवार, उन्होंने एक फायर किया है, और फॉर्चुनेटली जो इसका पूरी तरह बचाव हो गया और सिविल हॉस्पिटल एडमिट है, कार्रवाई शुरू कर दी है, हर एंगल जो देखा जा रहा है, जैसे भी कोई बात सामने आएगी, कोई एविडेंस सामने आएगा तो उसी हिसाब से कार्रवाई हमें।
9: पहले से ही भारतीय जनता पार्टी कहते आ रही थी कि पंजाब में सब कुछ, चाहे कानून की व्यवस्था हो चाहे भ्रष्टाचार हो, चरम पर पहुंची हुई है, कानून की व्यवस्था चरमराई हुई है और भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंची हुई है। और आज जो हम कह रहे थे उस बात का पुष्टिकरण स्वयं उच्च न्यायालय ने किया है, हाईकोर्ट ने किया है। आज न्यायालय ने सीबीआई जांच के लिए कहा है। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को और भगवंत मान जी को इस पर सफाई देनी चाहिए कि आखिर कितना का घोटाला हुआ है और उनके खुद के सचिव इसमें कितने लिप्त हैं।
17: पंजाब के अंदर जो आज कल भी सरपंच की हत्या कर दी गई, गैंगस्टर खुलेआम गोलियां दाग रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, लोग जेलों से बैठकर फिरौती मांग रहे हैं, तो वहाँ लॉ ऑर्डर कलेप्स कर चुका है, और जो चिट्टा को ड्रग्स बोलते हैं, बड़ी जानलेवा ऐसी ड्रग्स हैं जो ऐसी मतलब फोन पर होम डिलीवरी हो रही है ड्रग्स की, वो संभालने में आम आदमी पार्टी सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है, और वहाँ हम लोगों ने ताकत से जमीन पर हम लोग उतरे हैं, और पंजाब में मुझे लगता है कि हम अच्छे बहुमत से सरकार बना।
14: पंजाब दे विच थां थां गोलियां बज रही ने, पर पंजाब सरकार सुती पई है। पिछले 4.5 साल दे विच कदे कबड्डी खिडारी, कदे कलाकार, कदे कोई व्यापारी, कोई वर्ग ऐसा नहीं जिन्हों गोलियां मार के ना मारिया गया। डर ते सहम दा माहौल। पंजाब दीआं मावां इस गल्लां तों चिंतित ने कि उहदा पुत घरों जावेगा, वापस आवेगा कि नहीं आवेगा। यह हालात पंजाब दे विच बणे होए ने, कानून व्यवस्था बुरी तरह तहस नहस हो चुकी है। व्यापारी, किसान, मैं समझदा कि मुलाजम, चाहे कोई वर्ग का भी आगू है, हरेक वर्ग अज इस गल दे डरों है कि घरों बाहर निकलीए कि ना निकलीए।
0: We're slipping into a very short break, but come right back. Coming up next, we'll tell you about those latest revelations when it comes to the Omani co-pilot and the confessions that he has made as a multi-nation probe is underway. Lots more lined up. Come right back.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
5: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.

0: मेरे देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।

0: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है
2: कुछ इससे भी अनोखा
1: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा, रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट रंग बना रहे,
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात,
3: वाओ मामा क्या स्वाद है,
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्थर मसाला,
0: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट रंग बना रहे।
5: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।

0: Yes. I don't read between the line. Only this advocate read between the line, reads between the lines. He thinks that he's practicing at Supreme Court, and he thinks he's smarter than Justice Nariman, Justice Bhuiya, and he can say anything and leap from it. But I'll not
1: May
0: talk
1: I
0: about him.
1: respond to
0: I'll talk
1: this sort
0: about
1: of
0: Tuhin Ji. Tuhin Ji
1: interpretive
0: gave an
1: denial?
0: example, interesting
1: This is a way
0: example.
1: of talking,
0: He
1: but I'd
0: said
1: like to respond
0: he
1: to
0: talked about Sunny Deol. Remember, he talked that tarikh pe tarikh, और ये protest पे protest करते जा रहे हैं. Someone must remind him. Sunny Deol fought for justice. Just like we are fighting for justice. So thank you for considering us the heroes and considering you the main villain over there. The parallel and the analogy which you made was at the right. That is my response to Tuhin Ji. And finally, I would just say, you know, this whole process of SIR and the way it functioned, we from the beginning we were against it, and from the beginning we were moving to Supreme Court here, there, everywhere, but we were not getting any answers. But and at the end, we were forced to come up on the streets, and then we come to know that it was not just us, but also the
2: Okay.
0: other two election commissioners, which were not on the same page with Gyanesh Kumar. So
2: Okay,
0: right now,
2: fine.
0: the
2: It's
0: only
2: great that
0: question which is
2: thanks to what
0: left
2: has
0: is.
2: happened in court today, you feel vindicated. You feel that justice is finally going to be done. So let's wait for the final judgment to come from the Supreme Court, which has the Chief Justice himself on
0: They
2: the
0: are not
2: case.
0: answering.
2: And let's hope through all of that justice will be done. Because remember, there's also a section of people who are saying, we don't care what the Supreme Court does. We are going to ensure that justice is done on the streets. So eventually, let's wait for the final word from the Supreme Court. For the time being, thank you very much, all gentlemen, Priyanka Bharti, for joining me. Because we're turning our focus now to the big battle that is taking place in Uttar Pradesh. And it's a battle, ironically, between two friends, between two allies, Samajwadi Party and Congress. And as a part of a major organizational rejig, the Congress has brought in a new working president, a new president in Uttar Pradesh. But is Imran Masood going to continue to be a thorn in the flesh of Samajwadi Party, or is there going to be a mending of fences? And more importantly, why did he say that any celebration of Captain Smit Machar is event bazi? Let's cut across to him. All right, and joining us now on the buck stops here is a member of parliament of the Congress from Saharanpur, but now their new working president in Uttar Pradesh, Mr. Imran Masood. Thank you very much, Imran Saab, humse baat karne ke liye. Pehle to bahut mubarakbad aapko.
3: Ji, shukriya.
2: बहुत सारी एनालिसिस हो गई है कि कैसे एक समीकरण बिठा रही है कांग्रेस पार्टी मुस्लिम ब्राह्मण दलित का, पर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं जानबूझ के समाजवादी पार्टी को इरिटेट करने के लिए तो आपको वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया है.
3: नहीं, कोई दूसरी पार्टी किसी दूसरे को इरिटेट नहीं करती, और हम लोग सहयोगी हैं. हम लोग आपस में, हमारे रिश्ते कोई कड़वाहट के नहीं है, हम लोग सहयोगी हैं.
2: पर मैं आपको, एक शिवपाल सिंह पटेल हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा है एक बार आपको सुनवाना चाहती हूँ, सुनिए.
4: 50 सीटें पे उनको मान जाना चाहिए, और बहुत ज्यादा है उनके लिए 50 सीटें. कांग्रेस की हैसियत के हिसाब से, इस समय की हैसियत हिसाब से बहुत ज्यादा है. डिजर्व तो 10-20 को करते हैं.
2: वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की हैसियत
3: हमें किसी से अपनी हैसियत मुझे अपनी हमें किसी से अपनी हैसियत का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए. और ये इस तरह की जो भाषा बुलवा रहे हैं, फिर हमारे मुंह में भी जबान है, आप बोलना हम भी जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि चीजें सही तरह से उतर जाएं. हम नहीं चाहते कि आपस में नाइतफाकियां हो या आपस के अंदर कोई इंतशार पैदा हो, और हम चाहते हैं कि सुकून के साथ सारी चीजें होनी चाहिए.
2: नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 10-20 ही मिलनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि उनके कैंडिडेट तो उतने ही हैं.
3: 107 सीट हमने तब लड़ी थी जब हमारी पार्टी सबसे कमजोर दौर में थी. 107 सीट तब लड़ी थी हमने. तो अगर वो फॉर्मूला आप देख रहे हैं तो फॉर्मूले के ऊपर ही बात कर लीजिए ना. हमने कब कहा कि आप ना बात करें? और मेरा तो सिर्फ इतना है कि जल्दी से जो भी करना है आप जल्दी से करिए, जिससे लोगों के अंदर समन्वय हो सके. ये जो इस तरह के बयान आएंगे, इन इस तरह के बयान से कार्यकर्ताओं के अंदर आपस में समन्वय नहीं रहेगा. फिर आप अपना गठबंधन करते रहिए, उसके कोई मायने नहीं होंगे गठबंधन के.
2: क्योंकि जो शिवपाल जी हैं, उन्होंने सिर्फ यही बात नहीं की है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि रायबरेली लड़ने से डर रहे थे राहुल गांधी, वो सिर्फ क्योंकि अखिलेश जी का सहारा था और उनका सपोर्ट था, इसीलिए वो रायबरेली लड़े और जीते.
3: अरे छोड़िए, ऐसे ऐसे लोगों के बयान हैं, क्या जवाब दें ऐसे लोगों को? क्या जवाब दें ऐसे लोगों को? हमें उनसे उनसे कोई मतलब नहीं. वो जाने, अखिलेश जी जाने. अब क्या कहूं मैं, जो मुझे अखिलेश जी बड़े नेता है, मैं क्या कहूं अखिलेश जी के लिए? मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूं.
2: क्योंकि सच बात तो ये है कि अभी अगर आखिरी इलेक्शन देखें 2024 का हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी 37 सीट

0: जीती है और कांग्रेस सिर्फ 6 ही सीटें जीत पाई, तो बिग ब्रदर
1: तो क्या हुआ है? एक बात तो बताइए, अब 2014 में 5 ही जीते थे ना, 2019 में भी 5 ही जीते थे। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद मैंने बार बार कहा है, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट था कि इतनी भारी सीटें जीत पाए।
0: आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 37 राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से जीती है।
1: समाजवादी भी और हम भी, दोनों, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों साथ चले थे ना तभी जीते, वरना एक बार बताइए 2022 में सरकार बन गई थी क्या? चारों तरफ शोर मच रहा था, नहीं बन पाई थी सरकार। अगर बनानी है तो ये बातें बंद करनी पड़ेंगी।
0: पर इमरान साहब, बातें तो कांग्रेस की तरफ से भी बंद करनी पड़ेंगी ना। आपका एक बयान था, आपने कहा देखिए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने किस तरीके से बिहेव किया, अब उनकी क्या हालत हो गई है। समाजवादी पार्टी में कहीं एक ऐसे फीलिंग आने लगी है कि ये दंभ है, ये एरोगेंस है कांग्रेस पार्टी का। स्ट्राइक रेट आपकी
1: नहीं,
0: कम
1: नहीं,
0: होती
1: हमारा
0: है, मांगे आपकी बड़ी होती है।
1: अब एक बार बताइए, कोई व्यक्ति इनकी पार्टी का कह रहा है कि वो राहुल गांधी उनकी वजह से जीते हैं, तो क्या जवाब दूं इसके ऊपर मैं, बताइए आप? मैं तो जवाब भी नहीं दिया इसीलिए कि फिर बात दूर तक जाती है, तो मैंने तो जवाब ही नहीं दिया इसीलिए अभी।
0: अभी जो है एक एनालिसिस ये है कि ये पूरा जो खींचतान चल रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में, ये बेसिकली मुस्लिम वोटों को लेकर के है। क्या इसी के चलते कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने कैप्टन स्मिथ मचार के ऊपर ट्वीट नहीं किया है, क्योंकि ये डायरेक्टली बीजेपी ने एलिगेशन लगाया है कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स की वजह से कैप्टन स्मिथ मचार पर राहुल
1: एक मिनट सुनिए डॉक्टर, एक मिनट सुनिए, कैप्टन मचार के ऊपर सबसे पहले स्टेटमेंट मैंने दिया कि उस आदमी ने बहादुरी को सलाम है, लेकिन उसको भी इवेंट बना दिया बीजेपी ने। अब बीजेपी का काम तो केवल इवेंट बनाना है। कैप्टन मचार के लिए हमने सबसे पहले बोला और मेरा सब जगह सबसे पहले चला है।
0: कैसे इवेंट कैसे बनाया, इवेंट कैसे बनाया? उन्होंने तो सिर्फ ये कहा है ना कि उनको बात करके उनकी बहादुरी की उन्होंने तारीफ की है।
1: अरे तो हमने भी तो तारीफ की, अब बहादुरी की तारीफ ही करते रहेंगे क्या? करती तारीफ और क्या करें उसकी तारीफ, बताओ क्या करना है? जो बता करना है आप बता दो मुझे।
0: राहुल जी ट्वीट कर दे
1: इस किस चीज के लिए,
0: कैप्टन
1: हर चीज।
0: स्मिथ
1: एक बात तो बताइए, हमने हम जो बोलते हैं राहुल जी तो बोल रहे हैं, कांग्रेस ही तो बोल रही है।
0: क्योंकि आपको याद होगा जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो वहां पर खड़गे जी का बयान आया, उन्होंने खास तौर पर कहा कि मेरा बोलना एक तरफ है, मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूं, क्योंकि एलओपी राहुल जी हैं, राहुल जी का बोलना वो सबसे ज्यादा जरूरी है।
1: तो हर चीज में जरूरी थोड़ी ना राहुल जी बोलेंगे, ये कहां से जरूरी हो गया कि हर चीज में राहुल जी बोलेंगे, बताइए।
0: बड़ी चीज है, देश का नाम ऊंचा हुआ है।
1: अरे तो देश का नाम ऊंचा हुआ अच्छा है ना,
0: ना राहुल जी ने, ना सोनिया जी ने, ना प्रियंका जी ने, कुछ भी उन्होंने ना बोला ना ट्वीट किया है।
1: ये विषय देश की राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ है। इसी के ऊपर चुनाव करा लेंगे अब, ये अब इसी के ऊपर बात करेंगे। मतलब आप बात नहीं करते हो रोजगार के ऊपर, बात नहीं करते हो विकास के ऊपर, बात नहीं करते हो एट्रोसिटी की, आपने उत्तर प्रदेश के अंदर हाईएस्ट एट्रोसिटी की घटना है उसके ऊपर आप बात नहीं करते हो। बात करोगे आप कैप्टन मचार की? अरे जो अपने आप मार रहे हैं उनके मारने वालों को भी कर लो कुछ।
0: पर आपको लगता नहीं है कि एक जब देश का मुद्दा है, अगर जैसे सोनिया जी ने गाजा को लेकर पेपर में एडिटोरियल लिखा था तो इसके ऊपर भी तो
1: मेरा विषय कैप्टन मचार के ऊपर इतनी चर्चा करना नहीं है ना, मैं इतनी चर्चा कर सकता हूं, मैंने बोल दिया, सबसे पहले बयान दे दिया था, बात खत्म। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, उसको जल्दी जल्दी ठीक होकर के अपने घर आए, अपने बच्चों में आए, बस।
0: आपको क्या लगता है कि उनको अशोक चक्र भी मिलना चाहिए कैप्टन मचार को?
1: अरे भारत रत्न दे दो, क्या बात आप कर रहे हैं आप, भारत रत्न दे दो भाई।
0: क्योंकि बहुत सारे जो सांसद भी हैं, मिलिंद देवरा जैसे लोग हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो काम किया है उनको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना चाहिए।
1: अरे तो आप भारत रत्न दे दो ना, उससे बड़ा सम्मान तो कोई नहीं, आप भारत रत्न दे दो।
0: आपको लगता है कि इसको राजनीतिक वजह से भुनाया जा रहा है कि जो मांग
1: अब इनके पास बचा तो कुछ है नहीं, इनके पास कुछ नहीं बचा है, यही बातें करेंगे ये, इन्हें नफरत फैलानी है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, बस हर चीज में हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना।
0: इस कैप्टन मचार का मुद्दा आपको लग रहा है हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया जा रहा है?
1: हर चीज में इन्हें एक ही नफरत दिखाई देती है, सिर्फ नफरत बोलते हैं ये, और ये मेरा इतना विषय नहीं है, इस पर चर्चा इतनी करने के लिए मैं बैठा नहीं हूं। आप कोई चर्चा राजनीतिक बात करिए, ये कोई विषय थोड़ी ना, इसके ऊपर हो गया, हमने तो बोल दिया, सबसे पहले बयान दिया था हमने।

0: क्योंकि इमरान साहब, अब जब आपको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है, आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बोली। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक ही विकल्प है मुसलमानों के लिए, वो है AIMIM, क्योंकि अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अनाउंसमेंट करना चाहिए कि एक मुसलमान चेहरा उनका मुख्यमंत्री का चेहरा?
1: कांग्रेस ने, कांग्रेस को जो करना चाहिए ना, कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस नहीं डरती है इस बात से कि कांग्रेस डर जाएगी कि मुसलमान को आगे बढ़ा दिया और हमने ये कर दिया। कांग्रेस ने तो जो करना था कर दिया। कांग्रेस को किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस ने तो करके दिखा दिया।
0: क्योंकि यही मांग आपको याद होगा उन्होंने बिहार में भी किया था कि आपने एक डिप्टी सीएम,
1: देखिए
0: डिप्टी सीएम गठबंधन ने मुसलमान को क्यों नहीं अनाउंस किया, घोषित क्यों नहीं?
1: देखिए ये नहीं नहीं आप ये बीजेपी का, ये बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी इसी एजेंडे को लेकर चल देगी।
0: नहीं, वो तो ओवैसी साहब ने बोला है कि आप भागीदारी दीजिए लीडरशिप में, मुसलमान आप नेता हैं, आप वहां के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं।
1: मुझे बताइए
0: आप सीएम फेस या डिप्टी सीएम फेस हो सकते हैं?
1: आप बताइए, सिंगल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया मुझे, सिंगल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया मुझे।
0: तो इसका क्या
1: वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने का मतलब क्या है? भागीदारी हिस्सेदारी बराबर की दे दी ना।
0: तो आगे यानी कि मुख्यमंत्री चेहरा भी आप हो सकते हैं?
1: नहीं, मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं हूँ। मुख्यमंत्री की दौड़ के अंदर सिर्फ अखिलेश जी हैं, वही चेहरा हैं। आप हमारे में लड़ने की कोशिश मत करिए, हम नहीं लड़ पाएंगे।
0: नहीं नहीं, मैं कैसे लड़ा सकती हूँ इमरान साहब? रोज सुबह बाइक तो आप देते हैं।
1: मुख्यमंत्री का चेहरा अखिलेश जी हैं, हम नहीं हैं और ना हमें बनना है।
0: तो
1: जो काम दिया है मैं सिर्फ उतना करना है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यहाँ से विदाई करा दें, तभी 29 को हम लोग जीत पाएंगे।
0: आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने 2 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी थी कि आप एक गठबंधन कर लीजिए, उस तरीके से वोट डिवाइड नहीं होंगे। अब गठबंधन नहीं हुआ, आगे आप क्या कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी को कि क्या दरवाजे खुले हैं? या
1: असद भाई की पॉलिटिक्स हमसे मेल नहीं कर रखाती।
0: क्यों?
1: जब हम लोग फिरका परस्ती के खिलाफ बोलते हैं तो फिरका परस्ती के खिलाफ बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ हिंदू फिरका परस्ती के खिलाफ बोलेंगे, हम मुस्लिम फिरका परस्ती के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हम फिरका परस्ती दोनों तरफ से, चाहे वो सांप्रदायिकता हिंदुओं की हो या मुसलमानों की हो, हम तो सख्त उसकी मुखालफत करेंगे, चाहे वो किधर से भी हो।
0: तो आप कह रहे हैं वो मुस्लिम सांप्रदायिक शक्तियों की वो करते हैं, हिमायत करते हैं?
1: नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हमारा मेल नहीं खाता उनसे, हमारी पॉलिसीज के साथ उनकी पॉलिसीज मैच नहीं करती हैं।
0: पर चाहे जितनी भी खींचतान हो सीटों को लेकर के, आप कह रहे हैं कि अभी भी सीएम फेस अखिलेश जी ही रहेंगे, यानी कि गठबंधन जारी रहेगा।
1: हाँ, सीएम फेस तो हमारी पार्टी तय करेगी, लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है वो अखिलेश यादव जी हैं। हमने तो नहीं कहा कि कोई हमारे यहाँ से सीएम फेस बन रहा है, हमने बिल्कुल भी नहीं कहा।
0: अगर गठबंधन चुनाव जीत जाता है तो आगे इमरान मसूद अपनी क्या भूमिका देखते हैं सरकार में?
1: जो मेरी पार्टी देखेगी, जो मेरे नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी देखेंगे, खड़गे जी देखेंगे, केसी वेणुगोपाल साहब देखेंगे, मैं कोई भूमिका तय करने वाला नहीं हूँ। मुझे तो जो वो तय करेंगे मैं वहां काम करूंगा, मुझे कोई वही नहीं है।
0: ओके, इमरान मसूद साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया।
0: Well, from the working president of the Congress in Uttar Pradesh to another new entrant to the grand old party, Priyanka Kakkar. Let's cut across now to her to find out why she has made the change from Aam Aadmi Party to its arch nemesis, the Congress. All right, and joining us now on the show is Priyanka Kakkar, somebody who has just joined the Congress party from the Aam Aadmi Party. It's been over a decade, Priyanka Kakkar. First of all, congratulations. And I have to say, very interesting day that we are speaking, because when you moved to the Congress party, you said that I can't defend the indefensible anymore. And as luck would have it, today, a CBI investigation has been ordered by the Punjab and Haryana High Court into corruption allegations in none less than the office of the Chief Minister of Punjab himself. Does this fall in the definition of what you called indefensible while moving?
2: Padmaja, no, I'll have to be candid there. I think machinery has been deployed, as it has been the BJP's pattern whenever there are elections. So given the past record also, we have seen what has come out in those corruption cases. That stays. Just because I've moved from the party, I can't just jump and say something else. We have seen BJP use its machinery against all the leaders across all opposition parties. And I think this is a very chit parichit pattern, and BJP should really get over it and do some kaam ki baat.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: I know the game and the game behind it. The build-up, the action and the people behind it. Across football, cricket and beyond. For all the insights and everything around the game. Catch me, Gaurav Gala on NDTV.
6: When it really matters.
7: Pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.

या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
2: कुछ इससे भी अनोखा।
1: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।

जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।

0: Now tell you about another big headline today that has been making the rounds. The Supreme Court had issued notices to the Election Commission and the Centre. The notices come on a plea seeking the suspension of the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. Now the plea alleges that the CEC took several decisions unilaterally without the consent of the other two election commissioners. The petition challenges the alleged lack of consensus in key decisions taken by the Election Commission. The Supreme Court has issued notice to the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and other two election commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi as well. The Supreme Court has sought the ECI's response within a week on the allegations. The court has said that it could reconsider or recall decisions if they were taken by the CEC without the required unanimity. The bench also noted that any modification in Form 6 were not approved by it. Last week, the Election Commission of India had claimed that the new declaration in the Form 6 was approved by the top court themselves.
1: हो सकता है सीसी सस्पेंड की जो मांग है उसको आप इतनी गंभीरता से ले सकते हैं क्या? ऐसा हो सकता है जो पहले कभी नहीं हुआ?
2: देखिए, सब कुछ संभव है। अब सुप्रीम कोर्ट तो अपनी जांच पड़ताल करेगी, रिकॉर्ड बुला के देखेगी, बट हमने तो सड़क पे देखा है, हमने तो ग्राउंड पे देखा है कैसे लाखों करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एजिटेशन अलग है, वो सड़क पे आ चुके हैं, देश की जनता सड़क पे आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रक्रिया पूरी करेगी और जनता अपनी जवाबदेही तय करेगी कि हमको इस सरकार से कैसा जवाब चाहिए।
3: पीआईएल लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना और नोटिस इश्यू करना ताकि दूसरे पक्ष को भी सुना जाए, यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक जुडिशियल प्रक्रिया है। सबसे पहले विषय उठाया गया कि इलेक्शन कमीशन के अंदर दो कमिश्नरों ने अपने कुछ विषय को लेकर चिट्ठी लिखा। यह भी डेमोक्रेसी का एक हेल्दी लक्षण है, लोकतंत्र में परस्पर विषय को चिट्ठी के माध्यम से अंकित करना, चिट्ठी लिखना और किसी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना और बाद में सहमति के साथ डिबेट और डिस्कशन हो और उसके बाद सहमति के साथ आगे बढ़ना, यही तो डेमोक्रेसी है।
4: Well, it's very clear that these deletions that have taken place are against everything our constitution and our election process stands for. It's extremely clear. We are protesting about that. I think the public has now realized that the elections are being manipulated, and we will continue our protest.
5: That's a very serious offense, particularly as long as Gyanesh Kumar remains. He will work for, he is a slave of BJP and he will work for BJP. He is not a neutral man. Election Commission is a neutral body. But after Gyanesh Kumar had come, it is not a neutral body.
0: Congress and the Samajwadi Party's alliance equation in Uttar Pradesh is showing fresh signs of friction ahead of the 2027 assembly elections. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has said that the focus should be on alliance's victory rather than how many seats each party gets. But Congress has now hit back. Congress MP Imran Masood has questioned how the alliance can achieve victory without first discussing the seat sharing. He said that victory is possible only when there are seats, directly responding to Akhilesh Yadav's remarks. Congress even stated that Samajwadi Party won seats because of Rahul Gandhi's push. There's big political debate over it. Here are some reactions that we are tracking.
6: ये बहुत अच्छी बात लगती है कि बात सीट की नहीं, बात जीत की होगी, लेकिन जब सीट ही नहीं होगी तो जीत कैसे होगी? तो मुझे भी यही कहना है, जब सीट नहीं तो फिर जीत कैसी होगी? जब सीट होगी तभी तो जीत होगी।
7: मुझे लगता है कि वो एक बार पीछे जाएं और जाके ये देखें, जब मुलायम सिंह यादव फुल फ्लैश उनकी गवर्नमेंट थी, क्या तब कभी 37 सीटें आई? और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की फुल फ्लैश गवर्नमेंट थी, क्या तब उनकी इतनी सीटें आई? जब बीएसपी के बहनजी के साथ मिलके चुनाव लड़े, 5 सीटें थी ना? तो सीटें तो राहुल गांधी जी की वजह से आई। राहुल गांधी जी जिस प्रकार सामाजिक न्याय की के योद्धा के तौर पर सामने आए,
8: राहुल गांधी हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज ड्यूरिंग द कैंपेन ही हैज़ लेड द कैंपेन विद सेव कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन एंड इट वाज द कंसोलिडेटेड एफर्ट ऑफ द कोएलिशन दैट 30 so many seats came in UP and very soon everything will be decided and it is for the leadership, the central leadership to decide both the parties.

0: that when, how and how many seats.
1: Punjab Chief Minister Bhagwat Mann is facing fresh political heat after Punjab and Haryana High Court ordered a CBI probe into alleged corruption involving his OSD. The allegations center on claims of bribery and alleged fixed rates for postings and approved linked to Chief Minister's office. BJP leader Ravneet Singh Bittu has attacked Chief Minister Mann, calling him a Beiman Mann and alleging that corruption within the Chief Minister's office is prominent. But Punjab Minister Aman Arora has hit back, accusing the central agencies like CBI and ED of working at the BJP's behest and questioning whether the probe will deliver justice.
2: 5 years lage pure election se pehle kattar imandar aur aaj अक्टूबर में जो आज फैसला हाई कोर्ट से आया है तो इनको पूरे इनका पूरा चेहरा नंगे होने में पूरे 5 साल लग गए। तो आज भगवंत मान साहब नहीं रहे, आज बेईमान मान के नाम से आप जाने जाओगे।
3: हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है ये एक बहुत ही सीरियस इशू है, ये एक बहुत ही करप्शन से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है और ऐसे सीरियस ऑफेंस को देखते हुए तुरंत सीबीआई को 2 महीनों में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। अब दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा और सबको सामने आएगा किस तरह से भगवंत मान जी ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम से अपने ओएसडी के माध्यम से आम आदमी पार्टी पैसे इकट्ठे कर रही थी। इसमें अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी का रोल भी सामने आएगा।
4: इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी है चाहे सीबीआई है, वो केंद्र सरकार के बिहाफ पे उनकी एजेंसी बनके काम करती है। इंसाफ का तो कोई मेरे को लगता नहीं है कि कोई इंसाफ होएगा वहां पे, क्योंकि वो विंडिक्टिव होके काम करती है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे।
5: मेरा सीधा सवाल है सीएम भगवंत मान नु कि तू अपने पोस्टर ते लवा रहे हैं कट्टर इमानदार दे ते दफ्तर तेरा सारा बेईमाना ना भरिया, इहदा जवाब अज हाई कोर्ट नहीं देता ते आंदे 2 महीनों च इह जिन्ने स्केलटनज इन्हां दे कबर्ड च ने सारे बाहर डिगने शुरू हो जाण। सीएमओ दा अपना ऑफिस इहदे ओएसटी इहदे विच नेम कीते गए ने, वड्डे पैमाने ते पैसे लैके बदलियां ते होर सिफारशां ते होर कारोबारी जिहड़े ने उन्हां जिहड़ी मदद कीती है, ये सीबीआई दा जिहड़ा अज हाई कोर्ट दा फैसला है ये डायरेक्ट वड्डी चुनौती है आम आदमी सरकार नूं। ये निरी मशहूरियां दी सरकार है, झूठी सरकार है।
6: अनफॉर्चुनेटली मैनूं लगदा कि अज दे हालात जो पंजाब दे आ, मैं ऑफिसर्स नूं भी और डीजीपी नूं और सिविल ऑफिसर्स नूं भी चीफ सैकटरी नूं ये वॉर्न करदा अपनी जिम्मेवारी निभाओ। जिहड़े इन्हां दे एमएलए आ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਸਰ ਖਾਨਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਲੂਟਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ।
7: पुलिस को भगवंत मान केजरीवाल ने अपना नौकर बना रखा है पंजाब में। ईडी जो डीजीपी पंजाब का है गौरव यादव, वो कच्चा डीजीपी है पिछले 4-4.5 साल से, इसलिए पंजाब बहुत सीरियस क्राइसिस में है और मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और इसके साथ साथ जो करप्शन है उसका तो बहुत ज्यादा इस वक्त बोलबाला हो चुका है और चीफ मिनिस्टर आप खुद उसकी वाइफ के ऊपर इल्जाम लग गए 5 करोड़ के, उसके ओएसडी के मुतलक ईडी ने 4 चिट्ठियां लिखी हैं डीजीपी पंजाब को के ओएसडी घुम्मन के खिलाफ एफआईआर दर्ज को नहीं, लेकिन नहीं की। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज पंजाब में किस तरह की पुलिसिंग हो रही है।
8: मुख्यमंत्री साहब ने पूछना चाहना कि हूं की जवाब दोगे, असि कहने कि असि कट्टड़ ईमानदार है पर मैं तुम्हें कहना कि तुम कट्टड़ बेईमान। आज हूं ही देख रहे हो लोगों की जी अंदर भी देखा कि किस हिसाब के नाल जेडे गवर्नमेंट के पैसे धज्जियां उड़ाई जा रही, तो मैं पूछना चाहना कि ईमानदार साहब ये किसान की लुट खसुट कौन रोकेगा। ये जी चीज हुई है ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
1: Well, Punjab's law and order is under intense political scrutiny after three separate shooting incidents in just 72 hours. On October 4th, an ASI was shot in the arm while in Amritsar, while former Sarpanch Navtej Singh Neetu was shot dead in Tarantaran. A day earlier, influencer Mad Sandhu was shot dead in Amritsar. The opposition has now trained its gun on Bhagwat Mann government, accusing it of failing to control crime and gang violence. The BJP has targeted the Punjab government over the state's law and order situation. Sambit Patra of the BJP cited recent killings, alleging that the law and order had deteriorated under the Aam Aadmi Party government. He demanded answers from the Punjab government on situation. Congress Punjab in charge Sachin Pilot has alleged that gangsters are firing openly, extortion rackets are operating from jails, and even drugs that are being delivered to homes on phone orders.
9: ये ड्यूटी करने के बाद जीआरपी अमृतसर से मोटरसाइकिल पे अपने सिविल ड्रेस में घर आ रहे थे, तो घर से करीब एक किलोमीटर पहले ही जो यहाँ एक नहर पड़ती है अजराला, और वहाँ तीन जो अननोन पर्सन है मोटरसाइकिल सवार, उन्होंने एक फायर किया है और फॉर्चुनेटली जो इसका पूरी तरह बचाव हो गया और सिविल हॉस्पिटल एडमिट है, कार्रवाई शुरू कर दी है, हर एंगल जो देखा जा रहा है, जैसे भी कोई बात सामने आएगी, कोई एविडेंस सामने आएगा तो उसी हिसाब से कार्रवाई हमें
10: पंजाब के अंदर जो आज कल भी सरपंच की हत्या कर दी गई, गैंगस्टर खुलेआम गोलियां दाग रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, लोग जेलों से बैठकर फिरौती मांग रहे हैं, तो वहाँ लॉ ऑर्डर कलेप्स कर चुका है। और जो चिट्टा को ड्रग्स बोलते हैं, बड़ी जानलेवा ऐसी ड्रग्स हैं जो ऐसी मतलब फोन पर होम डिलीवरी हो रही है ड्रग्स की, वो संभालने में आम आदमी पार्टी सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है। और वहाँ हम लोगों ने ताकत से जमीन पर हम लोग उतरे हैं और पंजाब में मुझे लगता है कि हम अच्छे बहुमत से सरकार में।
11: पंजाब दे विच थां थां गोलियां बज रही ने, पर पंजाब सरकार सुती पई है। पिछले साढ़े चार साल दे विच कदे कबड्डी खिडारी, कदे कलाकार, कदे कोई व्यापारी, कोई वर्ग ऐसा नहीं जिन्हों गोलियां मार के ना मारिया गया। डर ते सहम दा माहौल। पंजाब दियां मावां इस गल्लां तों चिंतित ने कि उहदा पुत घरों जावेगा, वापस आवेगा कि नहीं आवेगा। यह हालात पंजाब दे विच बणे हुए ने। कानून व्यवस्था बुरी तरह तहस नहस हो चुकी है। व्यापारी, किसान, मैं समझदा कि मुलाजम, चाहे कोई वर्ग का भी आगू है, हरेक वर्ग अज इस गल ते डरों है कि घरों बाहर निकलीए कि ना निकलीए।
1: Moving on to the other big story that we're tracking here on NDTV, it's about the latest as far as the Fly Dubai horror is concerned. Well, the latest interrogation details of Omani co-pilot Hamam Al-Hamami point to a plan that investigators say was conceived long before the Fly Dubai flight. According to the confessions, he allegedly researched airlines flying to Israel, joined Fly Dubai with the route in mind, carried out the recce during repeated visits to Israel, and even aborted an earlier attempt in July. Investigators say his ultimate plan was to take control of the aircraft, kill the captain, maintain the appearance of a routine flight, and then crash the plane into a target in Israel. Here's more in this report.
12: The latest confessions of Omani co-pilot Hamam Al-Hamami detail just how long he had been planning his attack and what he ultimately intended to do. Investigators say the plan existed even before he joined Fly Dubai. He says that he researched airlines that flew to Tel Aviv and deliberately sought employment with one that would put him on the Israel route. Once he was flying for Fly Dubai, he visited Israel several times, and those visits became reconnaissance missions. During one visit to the Ben-Gurion airport in June, he focused on gathering information and preparing his attack. The first attempt was supposed to happen in July. He decided to seize an aircraft then, but abandoned the plan at the last moment because he had become friendly with one of the crew members. But the larger plan remained. His intention was to kill Captain Smith Machar inside the locked cockpit, take complete control of the aircraft, and then continue flying toward Israel as though absolutely nothing was wrong. That normality

0: An ASI was shot in the arm while in Amritsar, while former Sarpanch Navtej Singh Neetu was shot dead in Tarn Taran. A day earlier, influencer Matt Sandhu was shot dead in Amritsar. The opposition has now trained its gun on Bhagwat Mann government, accusing it of failing to control crime and gang violence. The BJP has targeted the Punjab government over the state's law and order situation. Sambit Patra of the BJP cited recent killings, alleging the law and order had deteriorated under the Aam Aadmi Party government. He demanded answers from the Punjab government on situation. Congress Punjab in charge Sachin Pilot has alleged that gangsters are firing openly, extortion rackets are operating from jails, and even drugs that are being delivered to homes on phone orders.
1: ये ड्यूटी करने के बाद जीआरपी अमृतसर से मोटरसाइकिल पे अपने सिविल ड्रेस में घर आ रहे थे, तो घर से करीब एक किलोमीटर पहले ही जो यहाँ एक लहर पड़ती है अजराला, और वहाँ तीन जो अननोन पर्सन है मोटरसाइकिल सवार, उन्होंने एक फायर किया है और फॉर्चुनेटली जो इसका पूरी तरह बचाव हो गया है और सिविल हॉस्पिटल एडमिट है। कार्रवाई शुरू कर दी है, हर एंगल जो देखा जा रहा है, जैसे भी कोई बात सामने आएगी, कोई एविडेंस सामने आएगा, तो उसी हिसाब से कार्रवाई हमें
2: पंजाब के अंदर जो आज कल भी सरपंच की हत्या कर दी गई, गैंगस्टर खुलेआम गोलियां दाग रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, लोग जेलों से बैठकर फिरौती मांग रहे हैं, तो वहाँ लॉ ऑर्डर कलेप्स कर चुका है। और जो चिट्टा को ड्रग्स बोलते हैं, बड़ी जानलेवा ऐसी ड्रग्स हैं जो ऐसी मतलब फोन पर होम डिलीवरी हो रही है ड्रग्स की, वो संभालने में आम आदमी पार्टी सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है। और वहाँ हम लोगों ने ताकत से जमीन पर हम लोग उतरे हैं, और पंजाब में मुझे लगता है कि हम अच्छे बहुमत से सरकार में।
3: पंजाब दे विच थां थां गोलियां बज रही ने, पर पंजाब सरकार सुती पई है। पिछले साढ़े चार साल दे विच कदे कबड्डी खिडारी, कदे कलाकार, कदे कोई व्यापारी, कोई वर्ग ऐसा नहीं जिन्हों गोलियां मार के ना मारिया गया। डर ते सहम दा माहौल। पंजाब दीआं मावां इस गल्लां तों चिंतित ने कि उहदा पुत घरों जावेगा, वापस आवेगा कि नहीं आवेगा। यह हालात पंजाब दे विच बणे होए ने। कानून व्यवस्था बुरी तरह तहस नहस हो चुकी है। व्यापारी, किसान, मैं समझदा कि मुलाजम, चाहे कोई कोई वर्ग का भी आगू है, हरेक वर्ग अज इस गल ते डरो है कि घरों बाहर निकलीए कि ना निकलीए।
0: Moving on to the other big story that we're tracking here on NDTV, it's about the latest as far as the Fly Dubai Horror is concerned. Well, the latest interrogation details of Omani co-pilot Hamam Al-Hamami point to a plan that investigators say was conceived long before the Fly Dubai flight. According to the confessions, he allegedly researched airlines flying to Israel, joined Fly Dubai with the route in mind, carried out the recce during repeated visits to Israel, and even aborted an earlier attempt in July. Investigators say his ultimate plan was to take control of the aircraft, kill the captain, maintain the appearance of a routine flight, and then crash the plane into a target in Israel. Here's more in this report.
4: The latest confessions of Omani co-pilot Hamam Al-Hamami detailed just how long he had been planning his attack and what he ultimately intended to do. Investigators say the plan existed even before he joined Fly Dubai. He says that he researched airlines that flew to Tel Aviv and deliberately sought employment with one that would put him on the Israel route. Once he was flying for Fly Dubai, he visited Israel several times, and those visits became reconnaissance missions. During one visit to the Ben-Gurion airport in June, he focused on gathering information and preparing his attack. The first attempt was supposed to happen in July. He decided to seize an aircraft then, but abandoned the plan at the last moment because he had become friendly with one of the crew members. But the larger plan remained. His intention was to kill Captain Smith Machar inside the locked cockpit, take complete control of the aircraft, and then continue flying toward Israel as though absolutely nothing was wrong. That normality was crucial to the plan.

0: I know the game and the game behind it. The build-up, the action, and the people behind it. Across football, cricket, and beyond. For all the insights and everything around the game. Catch me, Gaurav Gala, on NDTV.
1: When it really matters.
2: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
3: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
4: High rate, check the audio. High rate, check the audio.
2: Let's do it. Let's start.
5: Breaking stories, we're jumping straight into it.
2: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
6: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
2: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling. For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
6: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
2: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
7: Hello and welcome. You're watching NDTV with me, Tanisha Awasthi. Before we get to the big stories, let's have a quick check of the headlines. Terrorist pilot Al-Hamami's crash plot confession. Reports say that he planned deadly final approach at Ben Gurion Airport after killing Captain Smith. He joined Flight Dubai with intention of crashing the plane. London Chicago British Airways flight descends 28,000 feet within minutes, declares emergency rapid descent reported over Ireland. Supreme Court issues notices to election commissions. Top court to examine immunity for CEC says no decision on Form 6 for now. Amendments to be examined after records presented. Rahul Gandhi claims CEC changed Form 6 illegally. The poll body has counted him. BJP nominates 8 leaders to Rajya Sabha from Uttar Pradesh. Hardeep Puri not on the list. Candidates include OBCs, Dalits, Brahmins and even Thakurs. There's a massive storm over actor Sanjay Dutt's can't feel peace in this country remark. Actor clarifies after huge backlash, says it was a light-hearted remark and that the show was scripted. BJP asked Sanjay Dutt to shift to Pakistan. All right, we're getting in some breaking news that's just coming in from Polbine Dharapuram in the state of Tamil Nadu. This is a constituency, remember, which has already voted as far as bipoles are concerned. Tomorrow is the counting day, and just hours before the counting day, we learned that there is a controversy where ahead of the bipoles, we learned that DMK has alleged that there were gifts that were distributed by the TVK in Dharapuram constituency. The AIADMK has also put up a same allegation against the TVK where they've said that there was money distribution by the TVK in other constituencies as well, which are going to be counted. The votes are going to be counted tomorrow. The AIADMK, meanwhile, has filed an online complaint with the Election Commission of India. TVK for now has denied the cash for vote allegations. Sam is joining us on the phone line on that note. Sam, extremely big charges coming in there from the DMK as well as the AIADMK. How is it going to affect the TVK as far as the counting of votes in two constituencies is concerned tomorrow?
8: Well, the bipoles will happen tomorrow. The counting is later. And this allegation comes just on the eve of the by-elections in these two constituencies. And specifically, the AIADMK has given a complaint on record, mailing it to the chief electoral officer in Tamil Nadu, alleging that in the Madurantakam Assembly constituency, at least in 8 places, the claim money is being given, while the DMK claims cash gifts are being given to voters. A charge that the ruling TVK denies, and they turn the table against these two Dravidian parties, saying that it's they who indulge in cash for votes. But so far, the ruling party has not given any complaint to the Election Commission. And they also point out that the DMK and the AIADMK yet again are working in tandem against the ruling TVK and that they rubbish these charges. This by-election is very crucial because this comes just months after the assembly elections in the state, after in these two seats, the AIADMK MLAs resigned and they switched to the TVK. And the TVK is short of numbers for majority, and it hopes that by fielding the same candidates, the party will be able to win. Whereas for AIADMK, it's a prestige battle. For the ruling TVK, it's also a kind of a referendum of sorts.
7: Right.
8: While for the DMK, it's an attempt to recover some lost ground. It's in this context, this allegations come. So far, no word from the Election Commission. But the TVK, at least, it's denying these allegations.
7: All right, Sam, thank you very much for giving us those details and also clarifying that tomorrow is when the two constituencies will be voting as far as the bipole is concerned. But while all of this is happening, viewers, let's also tell you that there is a fresh political clash that is brewing in Tamil Nadu. And this time it's over Vijay's rural campaign for Dharapuram and the other constituency as well. Vijay has been taking his campaign to the grassroots, riding a bullock cart, climbing onto a tractor, meeting farmers and in the fields, and even stopping at village tea stalls. But those visuals have drawn jibes from M.K. Stalin and Udayanidhi Stalin, who accused Vijay of turning his campaign into political theatrics. Vijay has hit back, saying he does not meet people only during elections and that he will connect with them whenever he wants. Meanwhile, the Congress MP, Manikam Tagore, has taken a jibe over DMK and said that DMK insulted their alliance partners, and due to this, all have left the Congress party.
9: Election time la mattum makkala paaka varra aal naan kediyadu yen sondangala eppa venalum poi paapen ethana mora venalum poi paapen ungalku enna adha pathi
10: nethu mudalamaichar inge shooting edukka vandara. அப்போ ஒரு சீன்ல நான் தண்ணி குடிச்சேன், அவர் டீ குடிச்சாரு. அப்போ ஒரு சீன்ல டீ குடிக்கிற ஷாட்டு, அந்த டீயை குடிச்சிட்டு 500 ரூபாய் கொடுத்துட்டு பந்தா பண்ணிட்டு போயிருக்காரு. ஆனா மக்கள் தினமும் ஒரு டீக்கு எவ்வளவு கொடுக்கறாங்கன்னு இவருக்கு தெரியுமா?
11: They are not able to understand that what mistakes they have done it, how the government has become unpopular, the way they insulted the alliance partners, the way they treated the alliance partners with vengeance, the way they mistreated the senior leadership of the alliance partners in all other parties. Why all of us left? Those parties which are all there yesterday, all of us were with alliance with them, except TVK. All of us left. Why? Because of their behavior, their approach towards the way they were fed.
7: Let's now tell you about another big headline today that has been making the rounds. The Supreme Court had issued notices to the Election Commission and the Centre. The notices come on a plea seeking the suspension of the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. Now, the plea alleges that the CEC took several decisions unilaterally without the consent of the other two election commissioners. The petition challenges the alleged lack of consensus in key decisions taken by the Election Commission. The Supreme Court has issued notice to the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and other two election commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi as well. The Supreme Court has sought the ECI's response within a week on the allegations. The court has said that it could reconsider or recall decisions if they were taken by the CEC without the required unanimity. The bench also noted that any modification in Form 6 were not approved by it. Last week, the Election Commission of India had claimed that the new declaration in the Form 6 was approved by the top court themselves.
12: हो सकता है सीसी सस्पेंड की जो मांग है उसको आप इतनी गंभीरता से ले सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है जो पहले कभी नहीं हुआ?
13: देखिए, सब कुछ संभव है. अब सुप्रीम कोर्ट तो अपनी जांच पड़ताल करेगी, रिकॉर्ड बुला के देखेगी, बट हमने तो सड़क पे देखा है, हमने तो ग्राउंड पे देखा है कैसे लाखों करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया गया है. पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एजिटेशन अलग है, वो सड़क पे आ चुके हैं, देश की जनता सड़क पे आ चुकी है. सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रक्रिया पूरी करेगी और जनता अपनी जवाबदेही तय करेगी कि हमको इस सरकार से कैसा जवाब चाहिए.
14: पीआईएल लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना और नोटिस इश्यू करना ताकि दूसरे पक्ष को भी सुना जाए, यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक जुडिशियल प्रक्रिया है. सबसे पहले विषय उठाया गया कि इलेक्शन कमीशन के अंदर दो कमिश्नरों ने अपने कुछ विषय को लेकर चिट्ठी लिखा। तो यह भी डेमोक्रेसी का एक हेल्दी लक्षण है, लोकतंत्र में परस्पर विषय को चिट्ठी के माध्यम से अंकित करना, चिट्ठी लिखना और किसी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना और बाद में सहमति के साथ डिबेट और डिस्कशन हो और उसके बाद सहमति के साथ आगे बढ़ना, यही तो डेमोक्रेसी है।
15: Well, it's very clear that these deletions that have taken place are against everything our constitution and our election process stands for. It's extremely clear. We are protesting about that. I think the public has now realized that the elections are being manipulated, and we will continue our protest.
16: That's a very serious offense, particularly as long as Jnanesh Kumar remains. He will work for, he is a slave of BJP and he will work for BJP. He is not a neutral man. Election Commission is a neutral body. But after Jnanesh Kumar had come, it is not a neutral body.
7: Congress and the Samajwadi Party's alliance equation in Uttar Pradesh is showing fresh signs of friction ahead of the 2027 assembly elections. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has said that the focus should be on alliance's victory rather than how many seats each party gets. But Congress has now hit back. Congress MP Imran Masood has questioned how the alliance can achieve victory without first discussing the seat sharing. He said that victory is possible only when there are seats, directly responding to Akhilesh Yadav's remarks. Congress even stated that Samajwadi Party won seats because of Rahul Gandhi's push. There's big political debate over it. Here are some reactions that we are tracking.
17: ये बहुत अच्छी बात लगती है कि बात सीट की नहीं, बात जीत की होगी, लेकिन जब सीट ही नहीं होगी तो जीत कैसे होगी? तो मुझे भी यही कहना है, जब सीट नहीं तो फिर जीत कैसी होगी? जब सीट होगी तभी तो जीत होगी।
18: मुझे लगता है कि वो एक बार पीछे जाएं और जाके ये देखें, जब मुलायम सिंह यादव फुल फ्लैश उनकी गवर्नमेंट थी, क्या तब कभी 37 सीट आई? और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की फुल फ्लैश गवर्नमेंट थी, क्या तब उनकी इतनी सीटें आई? जब बीएसपी के भैंजी के साथ मिलके चुनाव लड़े, 5 सीटें थी ना? तो सीटें तो राहुल गांधी जी की वजह से आई। राहुल गांधी जी जिस प्रकार सामाजिक न्याय की के योद्धा के तौर पर सामने आए,
19: राहुल गांधी हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज ड्यूरिंग द कैंपेन ही हैज़ लेड द कैंपेन विद सेव कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन एंड इट वाज द कंसोलिडेटेड एफर्ट ऑफ द कोएलिशन दैट 30 so many seats came in UP and very soon everything will be decided and it is for the leadership, the central leadership to decide, both the parties, that when, how and how many seats.
7: Punjab Chief Minister Bhagwat Mann is facing fresh political heat after Punjab and Haryana High Court ordered a CBI probe into alleged corruption involving his OSD. The allegations center on claims of bribery and alleged fixed rates for postings and approved linked to Chief Minister's office. BJP leader Ravneet Singh Bittu has attacked Chief Minister Mann, calling him a Beiman Mann and alleging that corruption within the Chief Minister's office is prominent. But Punjab Minister Aman Arora has hit back, accusing the central agencies like CBI and ED of working at the BJP's behest and questioning whether the probe will deliver justice.
20: 5 saal lage pure election se pehle kattar imandar aur aaj अक्टूबर में जो आज फैसला हाई कोर्ट से आया है, तो इनको पूरे इनका पूरा चेहरा नंगे होने में पूरे 5 साल लग गए। तो आज भगवंत मान साहब मान साहब नहीं रहे, आज बेईमान मान के नाम से आप जाने जाओगे।
21: हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है, ये एक बहुत ही सीरियस इशू है, ये एक बहुत ही करप्शन से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है और ऐसे सीरियस ऑफेंस को देखते हुए तुरंत सीबीआई को 2 महीनों में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। अब दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा और सबको सामने आएगा किस तरह से भगवंत मान जी ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम से अपने ओएसडी के माध्यम से आम आदमी पार्टी पैसे इकट्ठे कर रही थी। इसमें अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी का रोल भी सामने आएगा।
0: इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी है चाहे सीबीआई है, वो केंद्र सरकार के बिहाफ पे उनकी एजेंसी बनके काम करती है। इंसाफ का तो कोई मेरे को लगता नहीं है कि कोई इंसाफ होएगा वहां पे, क्योंकि वो विंडिक्टिव होके काम करती है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे।
1: मेरा सीधा सवाल है सीएम भगवंत मान नू कि तू अपने पोस्टर ते लवा रहे हैं कट्टड़ इमानदार दे ते दफ्तर तेरा सारा बेईमाना ना भरिया, इहदा जवाब अज हाई कोर्ट नहीं देता ते आंदे दो महीनिया च यह जिन्ने स्केल्टन इन्हों के कबड़ च ने सारे बहर डिगने शुरू हो जाए। सी एम ओ का अपना ऑफिस ये ओ एस टी ए नेम किए गए ने, वे पैमाने से पैसे लैके बदलियां तो होर सिफारशा तो होर कारोबारी जड़े ने उन्हें जी मदद की है। ये सी बी आई का जो अज हाईकोर्ट का फैसला है ये डायरेक्ट वही चुनौती है आम आदमी सरकार को। ये निरी मशहूरिया की सरकार है, झूठी सरकार है।
22: अनफॉर्चुनेटली मैनू लगता कि अज के हालात जो पंजाब के आ, मैं ऑफिसर्स नू भी और डीजीपी नू और सिविल ऑफिसर्स नू भी चीफ सैकटरी नू ये वॉर्न करदा अपनी जिम्मेवारी निभाओ। जिहड़े इन्हां दे एमएलए आ तुहाडी हुण किश्ती डुबण लगी आ ते मैं तुहानू सलाह दिंदा उह किश्ती तो छाल मार जाओ, क्योंकि जो मैसर खाना एक एमएलए नाल होया वो तुहाडे नाल भी होना। ये लूटर पार्टी जिहड़ी आ दिल्ली वाले ये लुट के सारा लै गए, लेकिन उहदी सजा जिहड़ी आ तुहानू भुगतनी पैणी।
23: पुलिस को भगवंत मान केजरीवाल ने अपना नौकर बना रखा है पंजाब में। ईडी जो डीजीपी पंजाब का है गौरव यादव, वो कच्चा डीजीपी है पिछले 4-4.5 साल से, इसलिए पंजाब बहुत सीरियस क्राइसिस में है और मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और इसके साथ साथ जो करप्शन है उसका तो बहुत ज्यादा इस वक्त बोलबाला हो चुका है, और चीफ मिनिस्टर आप खुद उसकी वाइफ के ऊपर इल्जाम लगे 5 करोड़ के, उसके ओएसडी के मुतलक ईडी ने 4 चिट्ठियां लिखी हैं डीजीपी पंजाब को कि ओएसडी घुम्मन के खिलाफ एफआईआर दर्ज को नहीं, लेकिन नहीं की। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज पंजाब में किस तरह की पुलिसिंग हो रही है।
24: मुख्यमंत्री साहब ने पूछना चाहना कि हूं की जवाब दोगे, असं कहने कि असं कट्टड़ ईमानदार है, पर मैं तुम्हें कहना कि तुम कट्टड़ बेईमान। आज हमने ही देख रहे हो लोगों की जी अंदर भी देखा कि किस हिसाब के न जोड़े गवर्नमेंट के पैसे धज्जियां उड़ाइया जा रही। तो मैं पूछना चाहना कि ईमानदार साहब ये किसान की लुट सुट कौन रोकेगा। ये जी चीज़ हुई है नाल ही ये उत्ते मुख्यमंत्री साहब पूछना चाहना कि अज थोड़ी स्टेटमेंट आनी चाहिए है, स्टेटमेंट नहीं ये कट्टड़ ईमानदार जो होंगे उन्होंने रिजाइन कर देना चाहिए।
7: Well, Punjab's law and order is under intense political scrutiny after 3 separate shooting incidents in just 72 hours. On October 4th, an ASI was shot in the arm while in Amritsar, while former Sarpanch Navtej Singh Neetu was shot dead in Tarantaran. A day earlier, influencer Mad Sandhu was shot dead in Amritsar. The opposition has now trained its gun on Bhagwat Mann government, accusing it of failing to control crime and gang violence. The BJP has targeted the Punjab government over the state's law and order situation. Sambit Patra of the BJP cited recent killings, alleging that the law and order had deteriorated under the Aam Aadmi Party government. He demanded answers from the Punjab government on situation. Congress Punjab in charge Sachin Pilot has alleged that gangsters are firing openly, extortion rackets are operating from jails, and even drugs that are being delivered to homes on phone orders.
25: ये duty करने के बाद GRP अमृतसर से motorcycle पे अपने civil dress में घर आ रहे थे, तो घर से करीब 1 किलोमीटर पहले ही जो यहाँ एक नहर पड़ती है अजराला, और वहाँ 3 जो अननोन पर्सन है मोटरसाइकिल सवार, उन्होंने एक फायर किया है और फॉर्चुनेटली जो इसका पूरी तरह बचाव हो गया है और सिविल हॉस्पिटल एडमिट है, कार्रवाई शुरू कर दी है, हर एंगल जो देखा जा रहा है, जैसे भी कोई बात सामने आएगी, कोई एविडेंस सामने आएगा तो उसी हिसाब से कार्रवाई हमें।
26: पंजाब के अंदर जो आज कल भी सरपंच की हत्या कर दी गई,
2: गैंगस्टर खुलेआम गोलियां दाग रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, लोग जेलों से बैठकर फिरौती मांग रहे हैं, तो वहाँ लॉ ऑर्डर कलेप्स कर चुका है। और जो चिट्टा को ड्रग्स बोलते हैं, बड़ी जानलेवा ऐसी ड्रग्स हैं जो ऐसी मतलब फोन पर होम डिलीवरी हो रही है ड्रग्स की, वो संभालने में आप आम आदमी पार्टी सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है और वहाँ हम लोगों ने ताकत से जमीन पर हम लोग उतरे हैं और पंजाब में मुझे लगता है कि हम अच्छे बहुमत से सरकार बना।
3: पंजाब दे विच थां थां गोलियां बज रही ने पर पंजाब सरकार सुती पई है। पिछले साढ़े चार साल दे विच कदे कबड्डी खिडारी, कदे कलाकार, कदे कोई व्यापारी, कोई वर्ग ऐसा नहीं जिन्हू गोलियां मार के ना मारिया गया। डर ते सहम दा माहौल। पंजाब दीआं मावां इस गल्लां तों चिंतित ने कि उहदा पुत घरों जावेगा, वापस आवेगा कि नहीं आवेगा। यह हालात पंजाब दे विच बणे होए ने। कानून व्यवस्था बुरी तरह तहस नहस हो चुकी है। व्यापारी, किसान, मैं समझदा कि मुलाजम, चाहे कोई वर्ग का भी आगू है, हरेक वर्ग अज इस गल दे डरों है कि घरों बाहर निकलीए कि ना निकलीए।
7: Moving on to the other big story that we're tracking here on NDTV, it's about the latest as far as the Fly Dubai Hornet is concerned. Well, the latest interrogation details of Omani co-pilot Hamam Al-Hamami point to a plan that investigators say was conceived long before the Fly Dubai flight. According to the confessions, he allegedly researched airlines flying to Israel, joined Fly Dubai with the route in mind, carried out the recce during repeated visits to Israel and even aborted an earlier attempt in July. Investigators say his ultimate plan was to take control of the aircraft, kill the captain, maintain the appearance of a routine flight and then crash the plane into a target in Israel. Here's more in this report.

0: Election Commission and the Centre. The notices come on a plea seeking the suspension of the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. Now, the plea alleges that the CEC took several decisions unilaterally without the consent of the other two election commissioners. The petition challenges the alleged lack of consensus in key decisions taken by the Election Commission. The Supreme Court has issued notice to the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and other two election commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi as well. The Supreme Court has sought the ECI's response within a week on the allegations. The court has said that it could reconsider or recall decisions if they were taken by the CEC without the required unanimity. The bench also noted that any modification in Form 6 were not approved by it. Last week, the Election Commission of India had claimed that the new declaration in the Form 6 was approved by the top court themselves.
1: हो सकता है सीसी सस्पेंड की जो मांग है उसको आप कितनी गंभीरता से ले सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है जो पहले कभी नहीं हुआ?
2: देखिए, सब कुछ संभव है। अब सुप्रीम कोर्ट तो अपनी जांच पड़ताल करेगी, रिकॉर्ड बुला के देखेगी, बट हमने तो सड़क पे देखा है, हमने तो ग्राउंड पे देखा है कैसे लाखों करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एजिटेशन अलग है, वो सड़क पे आ चुके हैं, देश की जनता सड़क पे आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रक्रिया पूरी करेगी और जनता अपनी जवाबदेही तय करेगी कि हमको इस सरकार से कैसा जवाब चाहिए।
3: PIL लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना और नोटिस इश्यू करना ताकि दूसरे पक्ष को भी सुना जाए, यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक जुडिशियल प्रक्रिया है। सबसे पहले विषय उठाया गया कि इलेक्शन कमीशन के अंदर दो कमिश्नरों ने अपने कुछ विषय को लेकर चिट्ठी लिखा, तो यह भी डेमोक्रेसी का एक हेल्दी लक्षण है। लोकतंत्र में परस्पर विषय को चिट्ठी के माध्यम से अंकित करना, चिट्ठी लिखना और किसी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना और बाद में सहमति के साथ डिबेट और डिस्कशन हो और उसके बाद सहमति के साथ आगे बढ़ना, यही तो डेमोक्रेसी है।
4: Well, it's very clear that these deletions that have taken place are against everything our constitution and our election process stands for. It's extremely clear. We are protesting about that. I think the public has now realized that the elections are being manipulated, and we will continue our protest.
5: That's a very serious offense, particularly as long as Gyanesh Kumar remains. He will work for, he is a slave of BJP and he will work for BJP. He is not a neutral man. Election Commission is a neutral body. But after Gyanesh Kumar had come, it is not a neutral body.
0: Congress and the Samajwadi Party's alliance equation in Uttar Pradesh is showing fresh signs of friction ahead of the 2027 assembly elections. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has said that the focus should be on alliance's victory rather than how many seats each party gets. But Congress has now hit back. Congress MP Imran Masood has questioned how the alliance can achieve victory without first discussing the seat sharing. He said that victory is possible only when there are seats, directly responding to Akhilesh Yadav's remarks. Congress even stated that Samajwadi Party won seats because of Rahul Gandhi's push. There's big political debate over it. Here are some reactions that we are tracking.
6: ये बहुत अच्छी बात लगती है कि बात सीट की नहीं, बात जीत की होगी, लेकिन जब सीट ही नहीं होगी तो जीत कैसे होगी? तो मुझे भी यही कहना है, जब सीट नहीं तो फिर जीत कैसी होगी? जब सीट होगी तभी तो जीत होगी।
7: मुझे लगता है कि वो एक बार पीछे जाएं और जाके ये देखें, जब मुलायम सिंह यादव फुल फ्लैश उनकी गवर्नमेंट थी, क्या तब कभी 37 सीटें आई? और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की फुल फ्लैश गवर्नमेंट थी, क्या तब उनकी इतनी सीटें आई? जब BSP के बहन जी के साथ मिलके चुनाव लड़े, 5 सीटें थी ना? तो सीटें तो राहुल गांधी जी की वजह से आई। राहुल गांधी जी जिस प्रकार सामाजिक न्याय की के योद्धा के तौर पर सामने आए,
8: राहुल गांधी हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज ड्यूरिंग द कैंपेन ही हैज़ लेड द कैंपेन विथ सेफ कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन एंड इट वॉज द कंसोलिडेटेड एफर्ट ऑफ द कोएलिशन दैट 30 so many seats came in UP and very soon everything will be decided and it is for the leadership, the central leadership to decide, both the parties, that when, how and how many seats.
0: Punjab Chief Minister Bhagwat Mann is facing fresh political heat after Punjab and Haryana High Court ordered a CBI probe into alleged corruption involving his OSD. The allegations center on claims of bribery and alleged fixed rates for postings and approved linked to Chief Minister's office. BJP leader Ravneet Singh Bittu has attacked Chief Minister Mann, calling him a Beiman Mann and alleging that corruption within the Chief Minister's office is prominent. But Punjab Minister Aman Arora has hit back, accusing the central agencies like CBI and ED of working at the BJP's behest and questioning whether the probe will deliver justice.
9: 5 saal lage pure election se pehle kattar imandar aur aaj अक्टूबर में जो आज फैसला हाई कोर्ट से आया है तो इनको पूरे इनका पूरा चेहरा नंगे होने में पूरे 5 साल लग गए। तो आज भगवंत मान साहब नहीं रहे, आज बेईमान मान के नाम से आप जाने जाओगे।
10: हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है ये एक बहुत ही सीरियस इशू है, ये एक बहुत ही करप्शन से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है और ऐसे सीरियस ऑफेंस को देखते हुए तुरंत सीबीआई को 2 महीनों में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। अब दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा और सबको सामने आएगा किस तरह से भगवंत मान जी ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम से अपने ओएसडी के माध्यम से आम आदमी पार्टी पैसे इकट्ठे कर रही थी। इसमें अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन जी का रोल भी सामने आएगा।
11: इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी है चाहे सीबीआई है, वो केंद्र सरकार के बिहाफ पे उनकी एजेंसी बन के काम करती है। इंसाफ का तो कोई मेरे को लगता नहीं है कि कोई इंसाफ होएगा वहां पे, क्योंकि वो विंडिक्टिव होके काम करती है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे।
12: मेरा सीधा सवाल है सीएम भगवंत मान नूं कि तू अपने पोस्टर ते लवा रहे हैं कट्टर इमानदार दे ते दफ्तर तेरा सारा बेईमाना ना भरिया, इहदा जवाब अज हाई कोर्ट नहीं देता ते आंदे 2 महीनों च ये जिन्ने स्केलटन इन्हां दे कबर्ड च ने सारे बाहर डिगने शुरू हो जाण। सीएमओ दा अपना ऑफिस इहदे ओएसटी इहदे विच नेम कीते गए ने, वड्डे पैमाने ते पैसे लैके बदलियां ते होर सिफारशां ते होर कारोबारी जिहड़े ने उन्हां जिहड़ी मदद कीती है, ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਿਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
9: ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿਵਲ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਇਸਰ ਖਾਨਾ ਇੱਕ MLA ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਲੂਟਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ।
13: ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ। ਏਡੀ ਜੋ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਹੈ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਸੇ। इसलिए पंजाब बहुत सीरियस क्राइसिस में है और मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसके साथ साथ जो करप्शन है उसका तो बहुत ज्यादा इस वक्त बोलबाला हो चुका है। और चीफ मिनिस्टर आप खुद उसकी वाइफ के ऊपर इल्जाम लगे 5 करोड़ के, उसके ओएसडी के मुतलक ईडी ने 4 चिट्ठियां लिखी हैं डीजीपी पंजाब को कि ओएसडी घुम्मन के खिलाफ FIR दर्ज को नहीं, लेकिन नहीं की। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज पंजाब में किस तरह की पुलिसिंग हो रही है।
14: मुख्यमंत्री साहब ने पूछना चाहना कि हूं की जवाब दोगे, असं कहने कि असं कट्टर ईमानदार है, पर मैं तुम्हें कहना कि तुम कट्टर बेईमान। आज हूं ही देख रहे हो लोगों की जी अंदर भी देखा कि किस हिसाब के नाल जे गवर्नमेंट के पैसे जी तजियां उड़ाइया जा रही। तो मैं पूछना चाहना कि ईमानदार साहब ये किसान की लुट सुट कौन रोकेगा, ये जी चीज हुई है। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
0: Well, Punjab's law and order is under intense

0: On airport after killing Captain Smith, he joined Fly Dubai with intention of crashing the plane. London-Chicago British Airways flight descends 28,000 feet within minutes, declares emergency rapid descent reported over Ireland. Supreme Court issues notices to election commissions. Top court to examine immunity for CEC says no decision on Form 6 for now. Amendments to be examined after records presented. Rahul Gandhi claims CEC changed Form 6 illegally. The poll body has counted him. BJP nominates 8 leaders to Rajya Sabha from Uttar Pradesh. Hardeep Puri not on the list. Candidates include OBCs, Dalits, Brahmins and even Thakurs. There's a massive storm over actor Sanjay Dutt's "Can't Feel Peace in This Country" remark. Actor clarifies after huge backlash, says it was a light-hearted remark and that the show was scripted. BJP asked Sanjay Dutt to shift to Pakistan. All right, we're getting in some breaking news that's just coming in from Polbain Dharapuram in the state of Tamil Nadu. This is a constituency, remember, which has already voted as far as bipoles are concerned. Tomorrow is the counting day, and just hours before the counting day, we learned that there is a controversy where ahead of the bipoles, we learned that DMK has alleged that there were gifts that were distributed by the TVK in Dharapuram constituency. The AIADMK has also put up a same allegation against the TVK where they've said that there was money distribution by the TVK in other constituencies as well, which are going to be counted. The votes are going to be counted tomorrow. The AIADMK, meanwhile, has filed an online complaint with the Election Commission of India. TVK for now has denied the cash for vote allegations. Sam is joining us on the phone line on that note. Sam, extremely big charges coming in there from the DMK as well as the AIADMK. How is it going to affect the TVK as far as the counting of votes in two constituencies is concerned tomorrow?
1: Well, the bipoles will happen tomorrow. The counting is later. And this allegation comes just on the eve of the by-elections in these two constituencies. And specifically, the AIADMK has given a complaint on record, mailing it to the chief electoral officer in Tamil Nadu, alleging that in the Madurantakam Assembly constituency, at least in 8 places, they claim money is being given, while the DMK claims cash gifts are being given to voters, a charge that the ruling TVK denies, and they turn the table against these two Dravidian parties, saying that it's they who indulge in cash for votes. But so far, the ruling party has not given any complaint to the Election Commission. And they also point out that the DMK and the AIADMK yet again are working in tandem against the ruling TVK and that they rubbish these charges. This by-election is very crucial because this comes just months after the assembly elections in the state, after in these two seats, the AIADMK MLAs resigned and they switched to the TVK. And the TVK is short of numbers for majority and it hopes that by fielding the same candidates, the party will be able to win. Whereas for AIADMK, it's a prestige battle. For the ruling TVK, it's also a kind of a referendum of sorts.
0: Right.
1: While for the DMK, it's an attempt to recover some lost ground. It's in this context, this allegations come. So far, no word from the Election Commission. But the TVK, at least, it's denying these allegations.
0: All right, Sam, thank you very much for giving us those details and also clarifying that tomorrow is when the two constituencies will be voting as far as the bipoll is concerned. But while all of this is happening, viewers, let's also tell you that there is a fresh political clash that is brewing in Tamil Nadu. And this time it's over Vijay's rural campaign for Dharapuram and the other constituency as well. Vijay has been taking his campaign to the grassroots, riding a bullock cart, climbing onto a tractor, meeting farmers and in the fields and even stopping at village tea stalls. But those visuals have drawn jibes from MK Stalin and Udayanidhi Stalin, who accused Vijay of turning his campaign into political theatrics. Vijay has hit back, saying he does not meet people only during elections and that he will connect with them whenever he wants. Meanwhile, the Congress MP, Manikam Tagore, has taken a jibe over DMK and said that DMK insulted their alliance partners and due to this, all have left the Congress party.
2: Election time la mattum makkala paaka varra aal naan kediyadu. Yen sondangala eppa venalum poi paapen. எத்தனை முறை வேணாலும் போய் பார்ப்பேன். உங்களுக்கு என்ன அதை பத்தி?
3: நேற்று முதலமைச்சர் இங்க ஷூட்டிங் எடுக்க வந்தாரு. அப்ப ஒரு சீன்ல நான் தண்ணி குடிச்சேன், அவர் டீ குடிச்சாரு. அப்ப ஒரு சீன்ல டீ குடிக்கிற ஷாட்டு, அந்த டீயை குடிச்சிட்டு 500 ரூபாய் கொடுத்துட்டு பந்தா பண்ணிட்டு போயிருக்காரு. ஆனா மக்கள் தினமும் ஒரு டீக்கு எவ்வளவு கொடுக்கறாங்கன்னு இவருக்கு தெரியுமா?
4: I'm not able to understand that what mistakes they have done it. How the government has become unpopular. The way they insulted the alliance partners. The way they treated the alliance partners with vengeance. The way they mistreated the senior leadership of the alliance partners in all other parties. Why all of us left? Those parties which are all there yesterday. All of us were with the alliance with them, except TVK. All of us left. Why? Because of their behavior, their approach towards the way they were fed.
0: Let's now tell you about another big headline today that has been making the rounds. The Supreme Court had issued notices to the Election Commission and the Centre. The notices come on a plea seeking the suspension of the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. Now, the plea alleges that the CEC took several decisions unilaterally without the consent of the other two election commissioners. The petition challenges the alleged lack of consensus in key decisions taken by the Election Commission. The Supreme Court has issued notice to the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and other two election commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi as well. The Supreme Court has sought the ECI's response within a week on the allegations. The court has said that it could reconsider or recall decisions if they were taken by the CEC without the required unanimity. The bench also noted that any modification in Form 6 were not approved by it. Last week, the Election Commission of India had claimed that the new declaration in the Form 6 was approved by the top court themselves.
5: हो सकता है सीसी सस्पेंड की जो मांग है उसको आप कितनी गंभीरता से ले सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है जो पहले कभी नहीं हुआ?
6: देखिए, सब कुछ संभव है. अब सुप्रीम कोर्ट तो अपनी जांच पड़ताल करेगी, रिकॉर्ड बुला के देखेगी. बट हमने तो सड़क पे देखा है, हमने तो ग्राउंड पे देखा है कैसे लाखों करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया गया है. पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एजिटेशन अलग है, वो सड़क पे आ चुके हैं, देश की जनता सड़क पे आ चुकी है. सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रक्रिया पूरी करेगी और जनता अपनी जवाबदेही तय करेगी कि हमको इस सरकार से कैसा जवाब चाहिए.
7: पीआईएल लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना और नोटिस इश्यू करना ताकि दूसरे पक्ष को भी सुना जाए, यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक जुडिशियल प्रक्रिया है. सबसे पहले विषय उठाया गया कि इलेक्शन कमीशन के अंदर दो कमिश्नरों ने अपने कुछ विषय को लेकर चिट्ठी लिखा. यह भी डेमोक्रेसी का एक हेल्दी लक्षण है. लोकतंत्र में परस्पर विषय को चिट्ठी के माध्यम से अंकित करना, चिट्ठी लिखना और किसी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना और बाद में सहमति के साथ डिबेट और डिस्कशन हो और उसके बाद सहमति के साथ आगे बढ़ना, यही तो डेमोक्रेसी है.
8: Well, it's very clear that these deletions that have taken place are against everything our constitution and our election process stands for. It's extremely clear. We are protesting about that. I think the public has now realized that the elections are being manipulated, and we will continue our protest.
9: That's a very serious offense, particularly as long as Gyanesh Kumar remains. He will work for, he is a slave of BJP and he will work for BJP. He is not a neutral man. Election Commission is a neutral body. But after Gyanesh Kumar had come, it is not a neutral body.
0: Congress and the Samajwadi Party's alliance equation in Uttar Pradesh is showing fresh signs of friction ahead of the 2027 assembly elections. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has said that the focus should be on alliance's victory rather than how many seats each party gets. But Congress has now hit back. Congress MP Imran Masood has questioned how the alliance can achieve victory without first discussing the seat sharing. He said that victory is possible only when there are seats, directly responding to Akhilesh Yadav's remarks. Congress even stated that Samajwadi Party won seats because of Rahul Gandhi's push. There's big political debate over it. Here are some reactions that we are tracking.
10: ये बहुत अच्छी बात लगती है कि बात सीट की नहीं बात जीत की होगी लेकिन जब सीट ही नहीं होगी तो जीत कैसे होगी तो मुझे भी यही कहना है जब सीट नहीं तो फिर जीत कैसी होगी जब सीट होगी तभी तो जीत होगी
11: मुझे लगता है कि वो एक बार पीछे जाएं और जाके ये देखें जब मुलायम सिंह यादव फुल फ्लैश उनकी गवर्नमेंट थी क्या तब कभी 37 सीटें आई और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की फुल फ्लैश गवर्नमेंट थी क्या तब उनकी इतनी सीटें आई जब बीएसपी के बहन जी के साथ मिलके चुनाव लड़े 5 सीटें थी ना तो सीटें तो राहुल गांधी जी की वजह से आई राहुल गांधी जी जिस प्रकार सामाजिक न्याय की के योद्धा के तौर पर सामने आए
12: राहुल गांधी हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज ड्यूरिंग द कैंपेन ही हैज लेड द कैंपेन विद सेफ कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन एंड इट वाज द कंसोलिडेटेड एफर्ट ऑफ द कोएलिशन दैट 30 so many seats came in UP and very soon everything will be decided and it is for the leadership the central leadership to decide both the parties that when how and how many seats
0: Punjab Chief Minister Bhagwat Mann is facing fresh political heat after Punjab and Haryana High Court ordered a CBI probe into alleged corruption involving his OSD. The allegations center on claims of bribery and alleged fixed rates for postings and approved linked to Chief Minister's office. BJP leader Ravneet Singh Bittu has attacked Chief Minister Mann, calling him a Beiman Mann and alleging that corruption within the Chief Minister's office is prominent. But Punjab Minister Aman Arora has hit back, accusing the central agencies like CBI and ED of working at the BJP's behest and questioning whether the probe will deliver justice.
13: 5 years lage pure election se pehle kattar imandar aur aaj अक्टूबर में जो आज फैसला हाई कोर्ट से आया है तो इनको पूरे इनका पूरा चेहरा नंगे होने में पूरे 5 साल लग गए तो आज भगवंत मान साहब नहीं रहे आज बेईमान मान के नाम से आप जाने जाओगे
14: हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है ये एक बहुत ही सीरियस इशू है ये एक बहुत ही करप्शन से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है और ऐसे सीरियस ऑफेंस को देखते हुए तुरंत सीबीआई को 2 महीनों में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है अब दूध का दूध होगा पानी का पानी होगा और सबको सामने आएगा किस तरह से भगवंत मान जी ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम से अपने ओएसडी के माध्यम से आम आदमी पार्टी पैसे इकट्ठे कर रही थी इसमें अब अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी का रोल भी सामने आएगा
15: इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं चाहे वो ईडी है चाहे सीबीआई है वो केंद्र सरकार के बिहाफ पे उनकी एजेंसी बन के काम करती है इंसाफ का तो कोई मेरे को लगता नहीं है कि कोई इंसाफ होएगा वहां पे क्योंकि वो विंडिक्टिव होकर काम करती है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे
16: मेरा सीधा सवाल है सीएम भगवंत मान नु ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਂਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਕੈਲਟਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰ ਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਸੀ ਐਮ ਓ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਇਹਦੇ ਓ ਐਸ ਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ
17: ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਮੈਂ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿਵਲ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਇਸਰ ਖਾਨਾ ਇੱਕ MLA ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਇਹ

0: पांच सीटें थी ना, तो सीटें तो राहुल गांधी जी की वजह से आई। राहुल गांधी जी जिस प्रकार सामाजिक न्याय की के योद्धा के तौर पर सामने आए,
1: राहुल गांधी हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज ड्यूरिंग द कैंपेन ही हैज़ लेड द कैंपेन विद सेव कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन एंड इट वॉज द कंसॉलिडेटेड एफर्ट ऑफ द कोएलिशन दैट 30 so many seats came in UP and very soon everything will be decided and it is for the leadership, the central leadership to decide, both the parties, that when, how and how many seats.
2: Punjab Chief Minister Bhagwat Mann is facing fresh political heat after Punjab and Haryana High Court ordered a CBI probe into alleged corruption involving his OSD. The allegations center on claims of bribery and alleged fixed rates for postings and approved linked to Chief Minister's office. BJP leader Ravneet Singh Bittu has attacked Chief Minister Mann, calling him a Beiman Mann and alleging that corruption within the Chief Minister's office is prominent. But Punjab Minister Aman Arora has hit back, accusing the central agencies like CBI and ED of working at the BJP's behest and questioning whether the probe will deliver justice.
3: 5 years lage pure election se pehle kattar imandar aur aaj अक्टूबर में जो आज फैसला हाई कोर्ट से आया है, तो इनको पूरे इनका पूरा चेहरा नंगे होने में पूरे 5 साल लग गए। तो आज भगवंत मान साहब मान साहब नहीं रहे, आज बेईमान मान के नाम से आप जाने जाओगे।
4: हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है, ये एक बहुत ही सीरियस इशू है, ये एक बहुत ही करप्शन से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है और ऐसे सीरियस ऑफेंस को देखते हुए तुरंत सीबीआई को 2 महीनों में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। अब दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा और सबको सामने आएगा किस तरह से भगवंत मान जी ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम से अपने ओएसडी के माध्यम से आम आदमी पार्टी पैसे इकट्ठे कर रही थी। इसमें अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी का रोल भी सामने आएगा।
5: इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी है चाहे सीबीआई है, वो केंद्र सरकार के बिहाफ पे उनकी एजेंसी बनके काम करती है। इंसाफ का तो कोई मेरे को लगता नहीं है कि कोई इंसाफ होएगा वहां पे, क्योंकि वो विंडिक्टिव होके काम करती है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे।
6: मेरा सीधा सवाल है सीएम भगवंत मान नु कि तू अपने पोस्टर ते लवा रहे हैं कट्टर इमानदार दे ते दफ्तर तेरा सारा बेईमाना ना भरिया, इहदा जवाब अज हाई कोर्ट नहीं देता ते आंदे 2 महीनों च ये जिन्ने स्केलटन इन्हां दे कबर्ड च ने सारे बाहर डिगने शुरू हो जाए। सीएमओ दा अपना ऑफिस इहदे ओएसटी इहदे विच नेम कीते गए ने, वड्डे पैमाने ते पैसे लैके बदलियां ते होर सिफारशां ते होर कारोबारी जिहड़े ने उन्हां जिहड़ी मदद कीती है, ये सीबीआई दा जिहड़ा अज हाई कोर्ट दा फैसला है ये डायरेक्ट वड्डी चुनौती है आम आदमी सरकार नूं। ये निरी मशहूरियां दी सरकार है, झूठी सरकार है।
7: अनफॉर्चुनेटली मैनूं लगदा कि अज दे हालात जो पंजाब दे आ, मैं ऑफिसर्स नूं भी और डीजीपी नूं और सिविल ऑफिसर्स नूं भी चीफ सैकटरी नूं ये वॉर्न करदा, अपनी जिम्मेवारी निभाओ। जिहड़े इन्हां दे एमएलए आ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਸਰ ਖਾਨਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਲੂਟਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ।
8: पुलिस को भगवंत मान केजरीवाल ने अपना नौकर बना रखा है पंजाब में। ईडी जो डीजीपी पंजाब का है गौरव यादव, वो कच्चा डीजीपी है पिछले 4-4.5 साल से, इसलिए पंजाब बहुत सीरियस क्राइसिस में है और मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और इसके साथ साथ जो करप्शन है उसका तो बहुत ज्यादा इस वक्त बोलबाला हो चुका है और चीफ मिनिस्टर आप खुद उसकी वाइफ के ऊपर इल्जाम लग गए 5 करोड़ के, उसके ओएसडी के मुतलक ईडी ने 4 चिट्ठियां लिखी हैं डीजीपी पंजाब को के ओएसडी घुम्मन के खिलाफ एफआईआर दर्ज को नहीं, लेकिन नहीं की। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज पंजाब में किस तरह की पुलिसिंग हो रही है।
9: ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
2: Well, Punjab's law and order is under intense political scrutiny after three separate shooting incidents in just 72 hours. On October 4th, an ASI was shot in the arm while in Amritsar, while former Sarpanch Navtej Singh Neetu was shot dead in Tarantaran. A day earlier, influencer Mad Sandhu was shot dead in Amritsar. The opposition has now trained its gun on Bhagwat Mann government, accusing it of failing to control crime and gang violence. The BJP has targeted the Punjab government over the state's law and order situation. Sambit Patra of the BJP cited recent killings, alleging that the law and order had deteriorated under the Aam Aadmi Party government. He demanded answers from the Punjab government on situation. Congress Punjab in charge Sachin Pilot has alleged that gangsters are firing openly, extortion rackets are operating from jails, and even drugs that are being delivered to homes on phone orders.
10: ये ड्यूटी करने के बाद जीआरपी अमृतसर से मोटरसाइकिल पे अपने सिविल ड्रेस में घर आ रहे थे, तो घर से करीब 1 किलोमीटर पहले ही जो यहाँ एक नहर पड़ती है अजराला, और वहाँ तीन जो अननोन पर्सन है मोटरसाइकिल सवार, उन्होंने एक फायर किया है और फॉर्चुनेटली जो इसका पूरी तरह बचाव हो गया और सिविल हॉस्पिटल एडमिट है, कार्रवाई शुरू कर दी है। हर एंगल जो देखा जा रहा है, जैसे भी कोई बात सामने आएगी, कोई एविडेंस सामने आएगा, तो उसी हिसाब से कार्रवाई हमें
11: पंजाब के अंदर जो आज कल भी सरपंच की हत्या कर दी गई, गैंगस्टर खुलेआम गोलियां दाग रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, लोग जेलों से बैठकर फिरौती मांग रहे हैं, तो वहाँ लॉ ऑर्डर कलेप्स कर चुका है। और जो चिट्टा को ड्रग्स बोलते हैं, बड़ी जानलेवा ऐसी ड्रग्स हैं जो ऐसी मतलब फोन पर होम डिलीवरी हो रही है ड्रग्स की, वो संभालने में आप आम आदमी पार्टी सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है और वहाँ हम लोगों ने ताकत से जमीन पर हम लोग उतरे हैं और पंजाब में मुझे लगता है कि हम अच्छे बहुमत से सरकार में।
12: पंजाब दे विच थां थां गोलियां बज रही ने, पर पंजाब सरकार सुती पई है। पिछले 4.5 साल दे विच कदे कबड्डी खिडारी, कदे कलाकार, कदे कोई व्यापारी, कोई वर्ग ऐसा नहीं जिन्हों गोलियां मार के ना मारिया गया। डर ते सहम दा माहौल। पंजाब दियां मावां इस गल्लां तों चिंतित ने कि उहदा पुत घरों जाएगा, वापस आएगा कि नहीं आएगा। यह हालात पंजाब दे विच बणे हुए ने। कानून व्यवस्था बुरी तरह तहस नहस हो चुकी है। व्यापारी, किसान, मैं समझदा कि मुलाजम, चाहे कोई वर्ग का भी आगू है, हरेक वर्ग अज इस गल दे डरों है कि घरों बाहर निकलीए कि ना निकलीए।
2: Moving on to the other big story that we're tracking here on NDTV, it's about the latest as far as the Fly Dubai horror is concerned. Well, the latest interrogation details of Omani co-pilot Hamam Al-Hamami point to a plan that investigators say was conceived long before the Fly Dubai flight. According to the confessions, he allegedly researched airlines flying to Israel, joined Fly Dubai with the route in mind, carried out the recce during repeated visits to Israel, and even aborted an earlier attempt in July. Investigators say his ultimate plan was to take control of the aircraft, kill the captain, maintain the appearance of a routine flight, and then crash the plane into a target in Israel. Here's more in this report.
13: The latest confessions of Omani co-pilot Hamam Al-Hamami detail just how long he had been planning his attack and what he ultimately intended to do. Investigators say the plan existed even before he joined Fly Dubai. He says that he researched airlines that flew to Tel Aviv and deliberately sought employment with one that would put him on the Israel route. Once he was flying for Fly Dubai, he visited Israel several times, and those visits became reconnaissance missions. During one visit to the Ben-Gurion airport in June, he focused on gathering information and preparing his attack. The first attempt was supposed to happen in July. He decided to seize an aircraft then, but abandoned the plan at the last moment because he had become friendly with one of the crew members. But the larger plan remained. His intention was to kill Captain Smith Machar inside the locked cockpit, take complete control of the aircraft, and then continue flying toward Israel as though absolutely nothing was wrong. That normality was crucial to the plan. He wanted the aircraft to receive its normal clearances, make what appeared to be a perfectly routine approach to Ben-Gurion Airport, and give Israeli authorities no reason to suspect that the plane had been hijacked. Only in the final moments would he reveal his true intention. According to interrogation details, Al-Hamami wanted to crash the aircraft onto the Ben-Gurion airport, either into a building at the airport or onto another aircraft. Other reports say a Tel Aviv high-rise was also contemplated. And there was reportedly a fallback target. If he could not reach Israel, he allegedly intended to crash the aircraft into a US military base in Jordan. So what happened aboard the Fly Dubai flight was not a spontaneous act or a moment of madness. Investigators are describing a plan conceived well before he joined Fly Dubai, refined during repeated trips to Israel, aborted once in July, and finally attempted months later.
2: And with that, it's time for us to slip into a very quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.
14: A verdict can change a business. A law can reshape an industry. A regulation can create an opportunity or a risk. Because what happens in courts could have a direct impact on your business. Join me as I decode what legal decisions mean for markets, businesses, and investors. Closing argument, only on NTV Profit.